सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948, श्रावण माह की तिथि 1, तदनुसार जुलाई 23 ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोब्जे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. President of North Macedonia, Gordana Silonovska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: Senior BJP leader, Union Minister JP Nadda, has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion.
3: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं. What are the factors which are leading to paper leak? Who are the people involved? And how the central government has responded? जब हमारे ध्यान में कोई paper leak आया है, तो हमने किस तरीके से इसको address किया है?
1: The Union Minister said that NDA government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has taken up this matter very seriously. He reiterated the government's stand that it is ready for a discussion on NEET issue in Parliament and opposition should decide the duration of the debate. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines yesterday. In a social media post, Dr. Jaishankar said that India-Canada cooperation has been steadily growing. He said that the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. The External Affairs Minister also met with his New Zealand counterpart, Winston Peters, and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. They also discussed enhancing maritime cooperation between India and New Zealand. National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from Bombay Station under the Indian Broadcasting Company. On 8th of June in 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio, AIR. This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. During the independence struggle, radio was a powerful tool for disseminating information and fostering unity. Post-independence, it has been instrumental in promoting literacy, health awareness and agricultural knowledge, especially in rural areas. In 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster. Since 1927, radio has been an important part of people's life in the country. Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya. In men's cricket, first T20 international of three-match series between India and Zimbabwe will be played today in Harare. The match will begin at 4:30 p.m. Indian time. Shreyas Iyer-led India will play the second T20 on Saturday and the third match on Sunday at the same venue. India hold a commanding advantage over Zimbabwe in the shortest format of the game. The two teams have faced each other 14 times in men's T20 internationals, with India winning 11 matches and Zimbabwe 3. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's single second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda. And that is the end of this news bulletin.
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर।
5: एपिसोड नंबर 145 145।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्रीराम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण लता मंगेशकर के स्वर में। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा, सुगम संगीत का आप सुनेंगे तापसी चक्रवर्ती के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जौहर चाईवासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे खोरठा लोकगीत, कलाकार होंगे करुणा कुमारी और साथी। सुबह 9 का समय होगा कार्यक्रम विविधा का। सुबह 9:30 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। सुबह के 9:45 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसके प्रायोजक होंगे NCERT। सुबह 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 1:10 पर। 1:20 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा दोपहर के 3 आकाशवाणी रांची से। मुख्य समाचार आप सुनेंगे शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। मुख्य समाचार का प्रसारण होगा शाम के 5 आकाशवाणी रांची से। शाम के 5:02 का समय होगा कार्यक्रम विवरण का। शाम 5:05 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आप सुनेंगे युगल गीत। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा मूली की खेती व उन्नत किस्म। उसके बाद आप सुनेंगे हो लोकगीत फूलमती पाट पिंगुआ और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंट वार्ता। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे उरांव लोकगीत रमेश लगड़ा और साथी को। शाम के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग का। शाम के 6:30 का समय होगा संथाली कार्यक्रम का। शाम के 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से ही सुनेंगे जिले में आजकल। शाम 7:15 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 8:15 का समय होगा फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 का समय होगा समाचार संध्या का आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9। रात्रि के 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10 आप सुनेंगे संसद में प्रश्न काल का रिकॉर्डिंग आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत तापसी चक्रवर्ती के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चायवासा। कार्यक्रम जोहार चायवासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। श्रोताओं, आज है 23 जुलाई। जी हाँ, 23 जुलाई को हर साल भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण यह है कि 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। इस तरह से 23 जुलाई भारतीय इतिहास के दो महान स्वतंत्रता सेनानियों बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो सुनते हैं इस देशभक्ति गीत से। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म कर्मा के इस गीत से, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज के आवाजों में।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म घरोंदा से, रूना लैला और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में।
1: दीवानी भी
2: दो दीवाने शहर में।

0: अभी आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चाईबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। आइए अब सुनते हैं यह जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो वो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी गांव बारे हत्तो तथा तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: ये तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता काम सोए भरूपा ऐसे न करना ऐसे दुख कुरा मिना नहीं जापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा निका
7: अन्यान तुम लोग बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में बुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल में
8: अलिंग मुनिसुरन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाइ रो जिता हुरा रे मिनाइ रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा का अली आया नु तुम तेना मिल आप ही लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य

0: धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: अभी आपने सुना यह जरूरी संदेश। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बेताब से, सबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अभी आपने सुना सीता और गीता का ये गीत अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मजबूर से। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से ही।

0: दर्जे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
6: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
4: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
5: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026

0: का किया ऑनलाइन उद्घाटन, मिलेगा शुद्ध पेयजल। राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड को मिलेगी विमानन पाठ्यक्रमों की सौगात। रांची में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला एएमई और एयर होस्टेस ट्रेनिंग सेंटर। और रांची के खेलगांव में आज से द्वितीय राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। सभी 24 जिलों के 576 स्कूली बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि सरकार पेपर लीक के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करेगी। आज दिए इस बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनके हितों को नुकसान पहुंचाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिक्किम के नामची में तीस्ता जल विद्युत परियोजना सुरंग हादसे में झारखंड के श्रमिकों के प्रभावित होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ट्विटर पर साझा किए गए संदेश में मुख्यमंत्री ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग से प्रभावित झारखंडी श्रमिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार लगातार सिक्किम प्रशासन के संपर्क में है और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद के पुटकी में बीसीसीएल के कोल नीर प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस परियोजना के तहत खदानों से निकलने वाले पानी को शुद्ध कर स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। बीसीसीएल के निदेशक मानव संसाधन मुरली कृष्ण रमैया ने बताया कि इस पहल से कोयलांचल क्षेत्र में पानी की समस्या से जूझ रहे हजारों परिवारों को स्वच्छ पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
1: पर्यावरण के लिए हम लोग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तो ये 2 करोड़ प्लस में एक हम प्लांट्स लेकर के आए हैं। ये 24 KND का प्लांट है। कोई भी आदमी अपने 20 KND का आकर के घर करके यहाँ फैसिलिटी रहेगा नियर बाय विलेजर्स के लिए और नियर बाय हमारे पब्लिसर्स के लिए।
0: रांची में पूर्वी भारत का पहला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और एयर होस्टेस कोर्स नवंबर में राज्य स्थापना दिवस पर शुरू होगा। पीपीपी मॉडल के तहत धनबाद के फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में संचालित होने वाले इस 3 वर्षीय एएमई कोर्स की फीस 6 लाख रुपए है। एयर होस्टेस के 2 कोर्स होंगे जिसमें ग्रूमिंग और स्विमिंग ट्रेनिंग भी शामिल है। विमानन क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के शुरुआत से पूर्व देवघर नगर निगम सफाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अलर्ट मोड में है। अपर नगर आयुक्त रजनीश कुमार के अनुसार 30 जुलाई से शुरू होने वाले मेले के लिए मंदिर परिसर, शिवगंगा और प्रमुख मार्गों पर व्यापक सफाई व जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सावन के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और गंदगी को देखते हुए नगर निगम ने विशेष इंतजाम किए हैं।
2: परिसर की जहाँ तक बात है उस पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। सिद्धगंगा में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। जितने भी इंक्रोचमेंट इसको चाहे वो नाला पे हो, शौचालय पे हो, चाहे सरकारी संपत्ति पे, सारे अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है और सफाई व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। वो पूरे सिद्धगंगा में एक नेट का भी मार्किंग कर दिया गया ताकि जो खतरे के निशान से वो श्रद्धालु न जाए।
0: टाटानगर स्टेशन पर यात्रियों और ट्रेनों का दबाव कम करने के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल नया सैटेलाइट स्टेशन विकसित करेगा। रेलवे इंजीनियरों की टीम ने गोविंदपुर, मकदमपुर और हाता क्षेत्र का सर्वे किया जिसमें गोविंदपुर मकदमपुर क्षेत्र को सबसे उपयुक्त पाया गया है। रोजाना 52 जोड़ी ट्रेनों और 60,000 यात्रियों को संभालने वाले टाटानगर स्टेशन को इस नए स्टेशन से आउटर पर ट्रेनें रुकने की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा आज देवघर और दुमका जिले के दौरे पर जा रही हैं। वह दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था, साइबर

0: अपराध, नक्सल गतिविधियों और लंबित मामलों की समीक्षा करेंगी। डीजीपी के इस अहम दौरे को लेकर देवघर और दुमका पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था तथा आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोलकाता के 15वें शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोडरमा के डॉक्टर बीरेंद्र कुमार और विपिन चाते को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। उनकी शॉर्ट फिल्म लूटन सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री को ज्योरी मेंशन और तुमसे प्यार हो गया को बेस्ट म्यूजिक वीडियो ज्योरी अवार्ड मिला। यह फिल्में सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित है। पुरस्कार मिलने पर डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ने खुशी जताते हुए कहा कि लगातार मिल रहे सम्मान से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
1: हम लोग उस म्यूजिक वीडियो के द्वारा संदेश दिए हैं कि ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये कोई फन नहीं है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको इंड तक निभाना है। दूसरा है लूटन सिंह, वो लूटन सिंह एक 15 साल पुराना विधायक है। जब इलेक्शन होता है तब लूटन सिंह का दर्शन होता है, तरह तरह के सवाल आते हैं और नेता लोगों का जो चरित्र है उस हिसाब से लूटन सिंह अपना तरीके से आपको जवाब दे के निकल जाते हैं।
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, जो भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में रेडियो की अटूट शक्ति और महत्वपूर्ण भूमिका का रेखांकित करता है। 23 जुलाई 1927 को ही भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, जो बाद में 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा और फिर अखिल भारतीय रेडियो बना। एक रिपोर्ट।
2: वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुँच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,39,000 रुपये प्रति किलो है। रांची के खेलगांव में आज से 25 जुलाई तक द्वितीय राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस अंडर 12 प्रतियोगिता में सभी 24 जिलों के 576 सरकारी स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सुरेंग ने बताया कि जूनियर स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए खिलाड़ियों के रहने, भोजन और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया के तहत रांची, धनबाद, देवघर और गिरिडीह में सेपक टकरा अस्मिता लीग का आयोजन किया जाएगा। इसका पहला चरण 26 जुलाई को रांची और धनबाद में, जबकि दूसरा चरण 2 अगस्त को देवघर और गिरिडीह में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को एक प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा, पेपर लीक में शामिल अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए देश में बनाए जाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। सिक्किम टनल हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर, झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की मदद के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री से की बात। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद के पुटकी में BCCL के कोल नीर प्रोजेक्ट का किया ऑनलाइन उद्घाटन, मिलेगा शुद्ध पेयजल। राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड को मिलेगी विमानन पाठ्यक्रमों की सौगात, रांची में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला AME और एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग सेंटर। और रांची के खेलगांव में आज से द्वितीय राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, सभी 24 जिलों के 576 स्कूली बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: वर्ष 1956 में
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में आज के कलाकार हैं अनीता सेन। आज इनसे हम सुनेंगे अमीर खुशरो की एक बंदिश और एक टप्पा।

अभी आप सुन रहे थे हमारे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज की हमारी कलाकारा थी अनीता सेन, जिनसे आज हमने अमीर खुशरो की एक बंदिश सुनी, साथ ही सुना एक टप्पा। और यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं से थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत, जिसमें हमारी आज के कलाकार होंगी फागुनी पाठक। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनिए यह संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, जिसमें आज की हमारी कलाकार थी फागुनी पाठक। और इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से क्रमशः मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन।

0: विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्टैग अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, सदन इसे बाधित करेंगे, ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिलकर के हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
6: ऑपोजिशन ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी रिमेंस।
7: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
6: रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
8: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजर डान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जय भारती। लीजिए सुनिए यह संदेश।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े, भारतीय सेना।
1: कार्यक्रम जय भारती में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये पहला गाना। धुन तैयार किया है हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम चोरी चोरी।

अगला गाना हमने लिया फिल्म कश्मीर की कली से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीत है ओपी नैयर का और शब्दों में पिरोया है एस एच बिहारी ने।

आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म से विनोद राठौड़ की आवाज में ये प्यारा सा गाना। संगीत दिया था अनु मलिक ने और धुन तैयार किया था रानी मलिक ने। अब लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना।

मुझे हो जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। जब से मिले हो मुझे हो जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। ये अदाएं तेरी कर गई मुझे दीवाना, दीवाना, दीवाना, दीवाना, दीवाना, दीवाना, दीवाना, दीवाना। दिल ने कर

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हमराज से। ये गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने और धुन तैयार किया था सुधाकर शर्मा ने। और इसी के साथ हमारा आज का जय भारती कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार पेपर लीक से जुड़े मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। श्री मेघवाल ने बताया कि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे के आधार पर सुनवाई होगी। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और इन्हें कदाचार मुक्त तरीके से आयोजित करने के लिए कड़े कानून हैं।
1: युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए, इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी। प्रक्रिया ये है कि चीफ जस्टिस जो संबंधित हैं उनको तो कहा ही जाएगा, अगर उनको लगता है कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी बोला जाएगा और जल्दी से जल्दी ये कोर्ट स्थापित होंगे और युवाओं को न्याय मिलेगा, यही इनका उसका उद्देश्य।
0: जेपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में जहां बयानबाजी तेज है वहीं घेराव की राजनीति भी परवान चढ़ रही है। कल जहां भाजपा ने रांची में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था वहीं आज कांग्रेस इसी राह पर नजर आई, पार्टी ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया

0: बस भेजेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने आज कोडरमा जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवलशाही थाना क्षेत्र में अलग अलग टीमों ने विस्फोटक सामग्री के भंडारण और उससे जुड़े संभावित अवैध कारोबार की जांच के तहत छापेमारी की है। वहीं एनआईए की एक टीम नवादा फुलवरिया के निकट एक व्यवसायी के विस्फोटक भंडारण केंद्र पहुंचकर भी जांच कर रही है। धनबाद में आज जिला स्तरीय सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने सहियाओं से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की।
1: नंबर ऑफ डिलीवरीज बढ़ी है, इलाज का शोध बढ़ा है और इनकी मेहनत से ही पेशेंट हमारे सरकारी अस्पतालों में आना शुरू हुए। कृष्ण प्रदर्शन करने वाली सैयाओं को सैया किट के साथ सम्मानित किया। अभी हम लोग HBNC HBIC किट देंगे, बच्चों के लिए किट होगा जिसमें बच्चों के ग्रोथ को मॉनिटर किया जाएगा।
0: रांची में 26 जुलाई से डोरेंट कप टूर्नामेंट मैच खेले जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह और उद्घाटन मैच के लिए आज भी मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में बने काउंटरों के जरिए निःशुल्क टिकट वितरित किए जा रहे हैं। पहले दिन 12,000 टिकट बांटे गए। टिकट बचने की स्थिति में इन्हें कल छोड़कर 25 और 26 जुलाई को भी बांटा जाएगा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, जो भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में रेडियो के अटूट शक्ति और महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। आज ही के दिन 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं एनसीईआरटी

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
0: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
0: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
0: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही

0: ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कान्हाराम चौहान जी का।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
1: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजी जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
0: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
1: जी।
0: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
1: जी।
0: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
1: जी।
0: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नव वर्ष माना जाता है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
0: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
1: जी,
0: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
1: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं, और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम, जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
0: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
1: जी।
0: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
1: जी।
0: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
1: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: 8800-4405-559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है। और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं, भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
2: भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
3: बस चढ़ गया, अरे नहीं, कोई बात नहीं, चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
4: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
5: जी महाराज, जी महाराज।
4: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
6: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
2: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गाँव वालों ने सोचा, क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
4: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
7: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
8: जी महाराज।
7: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
4: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
7: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
4: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए। हा? आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
7: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
4: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णुदत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
8: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
9: महाराज की जय, महाराज की जय।
2: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
10: उसका ये दुस्साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे। अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
2: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
11: आज मैं राजा बनूंगी।
12: आज मैं राजा बनूंगा।
13: आज तो मैं राजा बनूंगा।
14: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
4: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
11: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
8: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
11: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
8: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
12: हमने तो देखा है।
15: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
11: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
8: महाराज की जय हो। जय हो।
2: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
7: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज। यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं, हाँ। लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
10: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोद कर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
2: शिला जब खोद कर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
15: ठहरो। न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
10: चोरी?
2: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
10: ये सच है। मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
15: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
2: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
15: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
10: झूठ?
2: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
15: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
10: चोट? वो
2: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
15: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे। उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
2: राजा को क्रोध आ गया।
10: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूं, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ।
2: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय 4th मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम लालच।

0: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
1: मस्कू भाई
2: जी जनाब,
1: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
2: लीजिए जनाब,
1: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो पैसे रखो
2: जनाब, थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
1: रखो रखो।
2: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया,
1: गर्मी में पानी पिलाया तुमने, रखो।
2: शुक्रिया
1: शुक्रिया।
3: अमृत वाला आ गया।
4: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
5: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
1: मशकूब भाई
2: जी जनाब,
1: प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
2: अरे तो क्या हुआ,
1: पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए, लाओ। बस बस, लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
5: सही कहा मशकूक भाई,
1: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
5: अभी तक तो कुछ नहीं।
1: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
5: अरे नहीं नहीं
1: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए साथ में।
5: भाई
1: जी,
5: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
1: क्या बात करते हैं,
5: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
1: इसमें नेकी की क्या बात है?
5: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
1: ये तो मेरा फर्ज था।
5: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
1: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
5: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
1: अच्छा,
5: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
1: ये तो बड़ा नेक काम है।
5: अब ये लीजिए।
1: ये किताब, ये किताब किस लिए?
5: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
1: अच्छा,
5: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
1: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूंगा।
5: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
1: तौबा तौबा तौबा,
5: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
1: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
5: साहब की दाम तो कमाल का असर है
6: जनाब,
5: लाजवाब इंसान है वो।
4: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जो जो मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
2: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
4: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
2: पैसा लाए हो?
6: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
2: मुंह उठाए खाली हाथ चले आते हो?
6: खुदा के लिए, खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है हकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए हकीम साहब।
2: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
6: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
2: बच्चे को गोद में उठाओ।
6: बच्चे की जान बचा लीजिए।
2: चलो निकलो बाहर, निकलो,
6: मर जाएगा ये।
2: उठा,
6: मर जाएगा।
2: चलो निकलो।
4: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हसबे मामूल गर्द आलूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई जी, मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है, एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ,
1: जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है, कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई।

0: उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
1: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? हमारी तो हाल आ गया। क्या खूब रंग चमक।
0: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
1: अमृत वाला आ गया। क्या खूब रंग जमाक।
0: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं।
1: या खुदा माफ।
2: अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संगदिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
5: नमस्कार।
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

मीरी में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम रांची मेलोडीज में। इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जोहार। रांची अभी डूबी हुई है भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के महोत्सव में। भगवान जगन्नाथ हम सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम सबकी यही मंगल कामना है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने जिन्हें सुनकर आप अपने सारे दुख तकलीफों को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और हमारे कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और लाए हैं हम आपके लिए प्यारे प्यारे से गीत। तो चलिए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज में अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना, फिल्म बहारों के सपने। संगीत दिया था आरडी बर्मन ने और धुन तैयार किया था मजरू सुल्तानपुरी ने। आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गाना। अगला गाना हमने मोहम्मद रफी की आवाज में लिया है।

एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म से आप सुनेंगे ये गाना। हसरत जयपुरी के बोल है और शंकर जयकिशन का संगीत।

रांची मेलोडीज कार्यक्रम आप सभी श्रोता सुन रहे हैं और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कुछ पुराने गीतों के बाद आइए अब सुनते हैं कुछ नए गाने। इसे हमने लिया फिल्म पति पत्नी और वो से। टोनी कक्कर और नेहा कक्कर की आवाजें हैं, संगीत भी दिया है टोनी कक्कर ने और तनिष्क बागची ने इनका साथ दिया है संगीत में। धुन बनाई है टोनी कक्कर, तनिष्क बाजकी एंड मेलो एडी ने। आइए सुनते हैं फिल्म पति पत्नी और वो से ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे बादशाह निकिता गांधी और सचिन जिगर की आवाजों में ये मस्ती भरा गाना फिल्म स्त्री से। संगीत दिया था सचिन जिगर ने और धुन तैयार किया था बादशाह और जिगर सरैया ने। आइए इस कार्यक्रम का अगला गाना लेते हैं और ये गाना हमने लिया है फिल्म रेड से। राहत फतेह अली खान की आवाज है, संगीत है तनिष्क बागजी का और शब्दों में पिरोया है मनोज मुंतशिर ने।

चलिए श्रोता, अब हम अगला गाना सुनते हैं और इस गाने को हमने लिया है फिल्म पैडमैन से। अरिजीत सिंह की आवाज़ है, संगीत है अमित त्रिवेदी का और शब्दों में पिरोया है कौशर मुनीर ने। तो आइए सुने फिल्म पैडमैन से ये गाना।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे मुख्य समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बीच जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सीआईडी की टीम ने जेपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची स्थित आवास पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीआईडी की टीम पुलिस बल के साथ उनके आवास पर पहुंची और जेपीएससी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने आज कोडरमा जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवलशाही थाना क्षेत्र में अलग अलग टीमों ने विस्फोटक सामग्री के भंडारण और उससे जुड़े संभावित अवैध कारोबार की जांच के तहत छापेमारी की। वहीं एनआईए की एक टीम नवादा फुलवरिया के निकट एक व्यवसायी के विस्फोटक भंडारण केंद्र पहुंचकर भी जांच कर रही है। रांची में 26 जुलाई से डोरन कप टूर्नामेंट मैच खेले जाने हैं। उद्घाटन समारोह और उद्घाटन मैच के लिए आज भी मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में बने काउंटरों के जरिए निःशुल्क टिकट वितरित किए गए। टिकट बचने की स्थिति में इन्हें कल छोड़कर 25 और 26 जुलाई को भी बांटा जाएगा। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 27 जुलाई तक आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत, जिसमें आज चर्चा होगी सोशल मीडिया के उपयोग में बरते सावधानी। आप इसमें एक भेंटवार्ता सुनेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र का प्रवेश। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रियांक कुमार और इनसे बातचीत करेंगे बसंत कुमार। जीवन परिचय में आप जानेंगे मार्टिन कूपर के बारे में और माइक्रोचिप के आविष्कार के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वाचन एवं सहयोग बसंत कुमार का है, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या नई जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो इस बार सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया के उपयोग में हमें क्यों सावधानी बरतनी है इसके बारे में, और साथ में हम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके बाद बारी होती है भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं विक्रम 1 अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र के प्रवेश के बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक मार्टिन कूपर के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें हम आपको आज जानकारी देंगे माइक्रोचिप के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सोशल मीडिया के उपयोग में हमें क्यों सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। चाहे हम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करें, ये सभी चीजें हमारे जीवन को आसान, सरल और लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए काफी मददगार भी साबित होते हैं। लेकिन इन्हीं सारी चीजों की वजह से और इनके गलत इस्तेमाल की वजह से कई बार हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। आज समाचार पढ़ने से लेकर शिक्षा प्राप्त करने, व्यवसाय को बढ़ावा देने, मनोरंजन करने, नई जानकारी हासिल करने और अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसका सही और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग किया जाए तो ये ज्ञान, संवाद और विकास का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है आज इसका दुरुपयोग। बिना सावधानी के इसका इस्तेमाल करना या तो साइबर अपराध, आर्थिक ठगी, मानसिक तनाव और समय की बर्बादी सामाजिक समस्याओं का कारण भी बनती जा रही है। अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर कभी भी हम कुछ भी पोस्ट करते हैं तो हमें का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अपने आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक खाते, एटीएम कार्ड की जानकारी या पासवर्ड, ओटीपी, यहाँ तक के घर का पूरा एड्रेस या फिर आप अगर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो अपनी जानकारी को बिल्कुल भी साझा नहीं करनी चाहिए। आज अपराधी इसी जानकारी का गलत उपयोग कर लोगों को आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक सोशल मीडिया अकाउंट के लिए अलग अलग और मजबूत पासवर्ड रखना बहुत आवश्यक है। पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षरों, अंकों और विशेष चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। समय समय पर इन पासवर्ड को बदलते रहना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी दोहरी सुरक्षा सुविधा जरूर चालू करनी चाहिए। फर्जी खबरों और अफवाहों से बचने के लिए हमें आज बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आज सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें वायरल होती हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। बिना सत्यापन के किसी भी समाचार, वीडियो या फोटो को आगे भेजना समाज में भ्रम और तनाव फैला सकता है। इसलिए किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले हमें पुष्टि विश्वसनीय समाचार स्रोतों से जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा अनजान लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर कई बार फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोग दूसरों को ठगने का काम करते हैं। कोई व्यक्ति स्वयं को किसी अधिकारी, मित्र या प्रतिष्ठित संस्था का प्रतिनिधि बताकर धोखा देने की कोशिश कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने या निजी जानकारी साझा करने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा अगर हम गौर करें तो बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। यदि हम सतर्क रहें, सही जानकारी साझा करें, दूसरों का सम्मान करें और अपनी गोपनीयता की रक्षा करें तो सोशल मीडिया हमारे जीवन को अधिक उपयोगी, ज्ञानवर्धक और सकारात्मक बना सकता है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और कभी भी अपनी गोपनीय सूचनाओं को, जानकारियों को बिल्कुल भी किसी के साथ साझा ना करें। ये तो हमने बात कर ली सोशल मीडिया के उपयोग में हमें किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए इसके बारे में, और अब हम साथ में बात कर लेते हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में, जो कि हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत और इसके गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए इस दिन को मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को मुंबई से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने नियमित रेडियो प्रसारण शुरू किया था, जिसे भारतीय प्रसारण की शुरुआत माना जाता है। बाद में सन 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और सन 1957 में इसे लोकप्रिय नाम आकाशवाणी मिला। रेडियो ने देश में समाचार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, संगीत, संस्कृति और जन जागरूकता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता, सरलता और व्यापक पहुंच के कारण करोड़ों लोगों का प्रिय संचार माध्यम है। FM, कम्युनिटी रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय प्रसारण दिवस हमें रेडियो के योगदान को सम्मान देने और निष्पक्ष, विश्वसनीयता, जनहितकारी प्रसारण के लिए महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। तो अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे लिए काफी गर्व की बात है, और आज हम बात कर रहे हैं विक्रम 1 और अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र के प्रवेश के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रियंक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और हेड स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट, BIT मिश्रा। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आज हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया पदार्पण जो हुआ है, एक प्राइवेट निजी क्षेत्र का, इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इसरो पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहा है और बहुत सारे पड़ाव पार करके वो देश को काफी आगे लाकर खड़ा कर चुका है। अब निजी क्षेत्र का इस क्षेत्र में प्रवेश से क्या बदलाव आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि विक्रम 1 जो है, जो कि स्काई रूट की तरफ से अंतरिक्ष में भेजा गया है, ये क्या है और किस प्रकार से इसकी डिजाइनिंग की गई है और किस समय से इसकी शुरुआत हुई थी?
1: सबसे पहले तो मैं स्काई रूट की टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने मिशन को बिल्कुल सफलतापूर्ण इसको कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम 1 जो है एक लो स्केल रॉकेट है, जिस तरह के रॉकेट इसरो बनाया करते हैं, लेकिन उससे लो स्केल रॉकेट है, क्योंकि इसका काम यह है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा और उसके बाद वहां पे जाके जो भी इसको अपने सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करना है या इस तरह की चीजें वो करेगा। तो विक्रम 1 जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट रॉकेट है एक तरह का, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बिल्कुल स्टार्टअप कंपनी ने इसको बनाया है। इनफैक्ट इसरो के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना पद छोड़ के और उसके बाद इस चीज की स्थापना की, और काफी सपोर्ट भी मिला था इसरो और गवर्नमेंट की तरफ से। तो विक्रम 1 जो है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसका जो रॉकेट इंजन है ये 3D प्रिंटेड है। तो ये अभी तक इस तरह का चीज, इस तरह के टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया गया था जिससे कि रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजा जा सके। तो ये है कि उसका जो डायमीटर है वो 1.5 मीटर्स है और उसका लेंथ भी उसके अकॉर्डिंग तय किया गया था ताकि वो LEO में जाके स्थापित हो सके।
0: अब भारत में एक निजी क्षेत्र का प्रवेश अंतरिक्ष विज्ञान में हो रहा है और इसके जो वैज्ञानिक है वो इसरो से संबंध रखते हैं, पहले उन लोगों ने इसरो में अपना योगदान दिया है, और अभी स्काई रूट को लेकर के एक नई जो बातचीत है वो अब विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान में शुरू हो चुकी है। तो स्काई रूट की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत की अगर हम, कब हुई, कैसे हुई, ये कहानी थोड़ी लोगों को जानने की एक उत्सुकता होगी, तो इसके बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो।
1: बिल्कुल, देखिए भारत देश में जो स्टार्टअप कल्चर था ये तो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के एडवाइस के और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चीजें चलनी शुरू हुई, तो जिसमें स्पेस और डिफेंस सेक्टर भी अछूता नहीं रहा है, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने देश को किसी भी तरह आत्मनिर्भर बना सके। तो इसके तहत स्पेस में आत्मनिर्भरता ये एक बहुत ही जरूरी कदम है जो कि लेना था, और इस तरह से जो इसरो के दो साइंटिस्ट थे ये सामने आए और इन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की एक निजी कंपनी है जिसकी स्थापना सन 2018 में जो पूर्ववर्ती वैज्ञानिक थे उन्होंने किया, पवन कुमार चंदाना और नागा भारत डाका ने, और ये हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई। तो बहुत ही इनिशियली बहुत ही कम लागत और कुछ साइंटिस्ट के मदद से, इनफैक्ट आपको ये बताएं कि BIT मिश्रा का एक विद्यार्थी हमारा था राकेश सकोटे, जो कि इसका 7th एम्प्लॉय था, तो बड़े छोटे रूप से इसको चालू किया गया और वैसे करके इसकी स्थापना हुई। और देखिए जहां तक बात है स्काई रूट की या इस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन की, प्राइवेट सेक्टर्स के आने की, तो इसरो जो है वो एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो R&D ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो उस पर रिसर्च करेंगे और उसको फैब्रिकेट करेंगे, तो ये सब चीज एक ही जगह पे होता है। लेकिन अगर हमारा R&D ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है तो उसको हम बिल्कुल दूसरे इंडस्ट्री को दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में दे सकते हैं, क्योंकि वो तो एक ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है जिसको कि वो डेवलप कर सकते हैं। तो वो R&D पे कम काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा काम करेंगे, ताकि इसरो और ज्यादा फोकस कर पाए R&D के सेक्टर में।
0: यानी कि स्काई रूट के आने से इसरो को भी काफी फायदा हो रहा है।
1: बिल्कुल फायदा होगा, इसलिए क्योंकि अब जो मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीजों का काम है ये प्राइवेट सेक्टर उठा सकते हैं। हमारे देश में ऑलरेडी L&T डिफेंस है या टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, ये लोग

0: के काम को करते आए हैं, और नेचुरल है कि जो काम काफी ज्यादा जिसमें पैसा लगता था तो फंड्स भी कम लगेंगे, और इस तरीके से हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे, तो इस तरह से काफी चीजें हो सकती हैं।
1: ये सारी चीजें फायदे के रूप में हमें दिख तो रही है, लेकिन इसमें एक और चीज हमें नजर आ रहा है, वो ये है कि वैसे छात्र युवा जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको स्कोप कम मिलता है, यानी कि आगे बढ़ने का जो मौका है वो कम मिलता है। अब इस चीज़ को लेकर के अगर स्काई रूट आगे बढ़ती है तो उसमें जो नए युवा हैं, जो प्रतिभाशाली युवा हैं, उनको मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी जो विज्ञान के क्षेत्र में फंड करने में प्रॉब्लम आते थे उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है।
0: देखिए, जहाँ तक वो प्राइवेट सेक्टर है या कोई भी इंडस्ट्री है, तो वो नेचुरल है कि वो एक स्किल्ड जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें वो चाहिए। अब ये स्किल डेवलपमेंट का काम जितना है, ये या तो हम विद्यालयों की तरफ से या विश्वविद्यालय की तरफ से या जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है वहां से हम कर सकते हैं, तो नेचुरल है कि इस तरह का स्किल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है उससे करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं स्पेस डिफेंस की चीजें जो है ये स्कूल लेवल पे भी बच्चों को बताना चाहिए, और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें आज के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण हो रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि AI आज के डेट में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, स्कूल लेवल पे भी उसको लेके आया जा रहा है, तो इस तरह से स्पेस डिफेंस की भी चीजें हम लोग स्कूल लेवल पे ला सकते हैं, और फाइनली जो स्किल डेवलपमेंट का काम है वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से करके आगे बढ़ सकते हैं। अब जहां तक सवाल है इसमें रोजगार बढ़ाने का या इस तरह की चीजें आती हैं, तो ये नेचुरल है कि जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर आएंगे रोजगार ऑटोमेटिक हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा।
1: अभी जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि नासा और उसके बाद कई ऐसे संस्थान हैं जो वैज्ञानिक तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्काई रूट के आने से अभी निजी अंतरिक्ष कंपनियों के इस तरह के बढ़ावे से भारत के स्पेस सेक्टर में काफी बदलाव आने की संभावना है, क्योंकि आप इसी डिपार्टमेंट में इसी क्षेत्र में अपना योगदान भी दे रहे हैं और इसरो के साथ कई सारे आपके प्रोजेक्ट भी चलते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के अगर और भी कई कंपनियां आती हैं तो क्या बड़ा बदलाव हो सकता है?
0: देखिए, स्पेस कोई छोटी चीज नहीं है, स्पेस बहुत बड़ा चीज है। आप जब शुरू करते हैं, चाहे वो पृथ्वी का सतह हो या उससे कई किलोमीटर हजारों किलोमीटर आगे, सभी जगह स्पेस है। सवाल ये उठता है कि हम उस तक पहुंच पाते हैं नहीं, तो अब वो समय चला गया जब हम कहा करते थे चंदा मामा दूर के, चंदा मामा पास के आ गए हैं। अब तो मंगल ग्रह पे भी हम लोग जाने की तैयारी कर चुके हैं, इनफैक्ट हम लोग पहुंच भी चुके हैं वहां तक, तो कई सारी चुनौतियां हैं जिसको कि हम लोगों ने किया है। तो इस हिसाब से अगर नासा से हम कंपेयर करेंगे तो हाँ बिल्कुल, नासा के पास उनका अपना बजट है और वो काफी ज्यादा रहता है उनका बजट। अगर हम इसरो से तुलना करेंगे तो कई गुना अधिक है नासा का बजट, लेकिन एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर जैसे स्पेस एक्स जो है वहां एलन मस्क की कंपनी है, तो उस तरीके को उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, वो प्राइवेट एरोस्पेस इंडस्ट्री है US के लिए। उसी तरह हमारे यहाँ स्काई रूट जो पहला प्राइवेट एरोस्पेस इंडस्ट्री हो सकता है, तो इस तरह से और ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि जो सैटेलाइट प्रोपल्शन के क्षेत्र में जैसे मनस्तु स्पेस काम कर रहा है, बेलाट्रिक्स काम कर रहा है, पिक्सेल कंपनी है जो काम कर रहा है, तो इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं जो अब धीरे धीरे हमारे देश में आ गई हैं, इनको काफी सपोर्ट भी दिया गया है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे एक इनस्पेस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का है, इनस्पेस ने काफी प्रमोट किया है इस चीज को कि कैसे हम लोग फंडिंग कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री के साथ हम तालमेल बिठा सकते हैं, तो इस तरीके से काफी गवर्नमेंट का भी बहुत सारे पॉलिसीज हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं।
1: आपको क्या लगता है कि अभी जिस प्रकार से इसरो लगातार काम करते इस क्षेत्र में बढ़ रहा है आगे, और स्काई रूट के आने से अब इस क्षेत्र में और फायदा हो सकता है, लेकिन चुनौतियों की अगर बात करें तो हर क्षेत्र में चुनौतियां हैं और स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान में भी चुनौतियां हैं, तो स्काई रूट के आने से और जो चुनौतियां हैं वो आपको क्या लगता है कि स्काई रूट को भी किन किन चुनौतियों से होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा?
0: देखिए, अगर कोई भी स्टार्टअप होता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है उन्हें फंड होना चाहिए। नेचुरल है, चाहे वो व्यक्तिगत इंसान किसी इंसान हो या कोई इंडस्ट्री हो, हर किसी को पैसे की जरूरत है, और जब तक वो फंड्स नहीं रहेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक चुनौती तो है कि उनको फंड्स इकट्ठे करने हैं, उन्हें उस तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए और लोग इन्वेस्ट करें उनमें, तो ये तो खैर एक अलग पहलू है, लेकिन कई सारी और चुनौतियां आती हैं जैसे मैन पावर रिटेन करना। तो ये है कि आप एक स्किल्ड मैन पावर बनाने के बाद आप किसी तरह भी उनको रिटेन कर पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के आने से, अगर हमारे पास कई सारे लॉन्च, आपने सुना होगा स्पेसएक्स कई सारे लॉन्च करता है, तो अगर हम कई सारे लॉन्च कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं जो हमारा स्पेस है उसमें हम लोग स्पेस डेब्रिस की समस्या भी बढ़ा रहे हैं। तो एक चुनौती तो ये हो जाएगी कि आप स्पेस डेब्रिज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप सही ढंग से अपने रॉकेट को छोड़ पाएं और वो नष्ट ना हो सके स्पेस डेब्रिज के चलते, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ी चुनौती होने वाली है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हर कोई चाह रहा है अपने आप को
1: स्टेबल करना,
0: स्टेबल करना, प्राइवेट सेक्टर में जाना, और हर कोई अपना सैटेलाइट चाहता है। अभी जिस तरह की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उसके हिसाब से हर कोई चाहता है कि हम सैटेलाइट, जो सर्विलेंस सैटेलाइट्स है उसको भेजें, कई सारे सर्विलेंस सैटेलाइट्स भेजें ताकि हम लोग बिल्कुल पिन पॉइंटेड रहें। तो समस्याएं हैं, चुनौती बहुत है, और उसको कैसे खोजना है ये भी हम इंजीनियर्स का ही काम है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चुनौती को भी एड्रेस कर पाएंगे आने वाले समय में।
1: इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो चुकी है और इसरो में आप लोग पहले से ही योगदान दे रहे हैं, BIT का कनेक्शन रहा है हमेशा से किसी न किसी प्रोजेक्ट में। तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो स्काई रूट की फाउंडेशन में या फिर उसके टीम में क्या BIT से कोई कनेक्शन है?
0: ये तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो पहले कुछ जो लोग मिलके जब स्टैब्लिश किए थे तो उसमें हमारा एक विद्यार्थी 2012 बैच का था, राकेश सकोटे
1: जी,
0: जो कि उसका 7th एम्प्लॉय है, तो उसका काफी योगदान रहा है उसके लिक्विड रॉकेट इंजन में, उसके डिजाइन में। उसके अलावा जो रिसेंट ग्रेजुएट है तो हमारे 4 और विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, तो टोटल 5 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो स्काई रूट जो विक्रम 1 है उस प्रोजेक्ट रिलेटेड है।
1: ये तो बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है कि BIT का स्काई रूट जो कि निजी अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में पहला जो उन्होंने सैटेलाइट छोड़ा वो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया और स्टेबल भी हो गया। सर लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो नए विद्यार्थी इस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या फिर अपना बड़ा सपना लेकर इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं?
0: जहाँ तक विद्यार्थियों का बात है तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि मेहनत जितना कर सके उन्हें पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है और एक चीज पे फोकस रखें। आज के समय में ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो मल्टीडिसिप्लिनरी होती जा रही है और कहीं ना कहीं हर किसी को जो नई टेक्नोलॉजी है उसको जरूर फोकस करना चाहिए। हम अगर ये सोचे कि हम तो सिर्फ एरोस्पेस इंजीनियर है और हम AI या मशीन लर्निंग और इन सब की तरफ क्यों देखें, तो ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा बहुत हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं विद्यार्थियों को ये जरूर कहूंगा कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटी पर भी ध्यान दीजिए, फोकस करिए और मेहनत करिए। मेहनत करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
1: तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आज हमने ये भी जाना कि अंतरिक्ष विज्ञान में नए जो प्राइवेट रूट्स खुल रहे हैं उनका क्या फायदा हो सकता है, निजी अंतरिक्ष कंपनियों के आने से देश को क्या फायदा हो सकता है इस बारे में, और बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं उनको काफी फायदा होगा। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बसंत।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र का प्रवेश और विक्रम 1 की। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में थे डॉक्टर प्रियंक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और हेड स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट BIT मिश्रा से। और अब आगे बढ़ते हुए क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और हर एपिसोड में एक नए वैज्ञानिक के जीवन के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और उनके संघर्षों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस महान वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं उनका नाम है मार्टिन कूपर। आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो, बैंकिंग हो, मनोरंजन हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर आपसी संवाद, लगभग हर क्षेत्र में मोबाइल की भूमिका देखी जाती है। लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि इस क्रांतिकारी तकनीक की शुरुआत किसने की होगी? तो जैसा कि हमने आपको नाम बताया मार्टिन कूपर का, तो ये श्रेय मार्टिन कूपर को ही जाता है और इन्हें मोबाइल फोन का जनक भी कहा जाता है। मार्टिन कूपर का जन्म 26 दिसंबर सन 1928 को शिकागो, इलिनॉय, अमेरिका में हुआ। बचपन से इन्हें विज्ञान और नई तकनीकों में बहुत गहरी रुचि थी। इन्होंने इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बाद में इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए आगे मेहनत करने लगे। कुछ वर्षों तक इन्होंने अमेरिकी सेना में सेवा भी दी। इसके बाद प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मोटोरोला से जुड़ गए। उस समय संचार के लिए मुख्य रूप से कार में लगे रेडियो फोन तार वाले टेलीफोन का उपयोग हुआ करता था। मार्टिन कूपर का सपना था कि लोग किसी वाहन या स्थान पर निर्भर हुए बिना चलते फिरते एक दूसरे से बात कर सकें। इनके नेतृत्व में मोटोरोला की टीम ने दुनिया का पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन विकसित करने का काम किया। इस फोन का नाम था डायनाटेक। ये आकार में बड़ा और वजन में लगभग 1 किलोग्राम के जितना था, लेकिन उस समय ये तकनीक की दुनिया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में उभर कर सामने आई। 3 अप्रैल सन 1973 को मार्टिन कूपर ने न्यूयॉर्क शहर की सड़क पर खड़े होकर इसी मोबाइल फोन से दुनिया की पहली सार्वजनिक मोबाइल कॉल करने का काम किया। ये कॉल उन्होंने प्रतिस्पर्धी। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि भविष्य में लोग कहीं से भी बिना तार के बातचीत कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती मोबाइल फोन बहुत महंगे हुआ करते थे और आम लोगों की पहुंच से काफी दूर थे, लेकिन मार्टिन कूपर का विश्वास था कि एक दिन हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन होगा, जैसे कि आज हम सभी के हाथ में मोबाइल फोन है। समय के साथ इनकी ये कल्पना सच भी साबित हुई और आज दुनिया भर में अरबों लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। मार्टिन कूपर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि तकनीक का उद्देश्य केवल सुविधा देना नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना भी होना चाहिए। अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए मार्टिन कूपर को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। इन्हें दूरसंचार और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका नाम आधुनिक संचार क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में लिया जाता है। मार्टिन कूपर का जीवन हमें ये सिखाता है कि बड़े सपने, मेहनत, वैज्ञानिक सोच और निरंतर प्रयास से दुनिया को बदला जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे चिप के बारे में जिसके बिना हम आज का जो मोबाइल फोन है शायद उसका भी इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते। हम बात कर रहे हैं माइक्रोचिप के बारे में। माइक्रोचिप, जिसने पूरी दुनिया की तकनीक को बदलने का काम किया, और ये आविष्कार इतना छोटा है कि हमारी उंगली के नाखून से भी इसका जो साइज है वो काफी छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी बड़ी है कि इसके बिना आज का आधुनिक जीवन लगभग असंभव सा है। हम जिन स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, कार, ATM, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच और चिकित्सा उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं उनमें एक समान छोटी सी चीज होती है जिसे माइक्रोचिप कहा जाता है। ये एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसमें लाखों, करोड़ों और आज के समय में अरबों सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक घटक समाहित होते हैं। यही चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का दिमाग मानी जाती है। सन 1958 में अमेरिकी इंजीनियर जैक किल्बी ने पहली सफल इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया। लगभग उसी समय रॉबर्ट नॉयस ने सिलिकॉन आधारित माइक्रोचिप विकसित करने की दिशा में अपना योगदान देना शुरू किया था। इन दोनों वैज्ञानिकों के कार्य ने आधुनिक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखने का काम किया। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में सैकड़ों अलग अलग पुर्जे लगाए जाते थे जिससे वे बड़े, भारी और कम विश्वसनीय भी होते थे। माइक्रोचिप के आने से इन सभी पुर्जों को एक छोटी सी चिप में समाहित करना संभव हो गया। इससे उपकरण छोटे, तेज और अधिक भरोसेमंद
ऊर्जा की दृष्टि से अधिक कुशल बन गए। माइक्रोचिप मुख्य रूप से सिलिकॉन नामक पदार्थ से बनाई जाती है और सिलिकॉन एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम माना जाता है। अत्यंत आधुनिक तकनीक की सहायता से इस पर सूक्ष्म ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं और गणना करने और निर्देशों को संसाधित करने का कार्य करते हैं। आज माइक्रोचिप का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। चिकित्सा में MRI मशीन, पेसमेकर और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों में माइक्रोचिप का उपयोग बहुत जोर शोर से हो रहा है। बैंकिंग में ATM कार्ड और स्मार्ट कार्ड माइक्रोचिप आधारित होते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग में आधुनिक कारों में इंजन नियंत्रण, ब्रेकिंग सिस्टम और एयरबैग और नेविगेशन सिस्टम भी माइक्रोचिप से संचालित होते हैं। शिक्षा, संचार और मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, वीडियो कॉल करना हो, इंटरनेट पे कुछ ढूंढना हो या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना हो या फिर आपको रोबोटिक्स और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों की प्रगति में माइक्रोचिप की भूमिका की बात करें तो सबसे ज्यादा है। आज की दुनिया में माइक्रोचिप का निर्माण अत्यंत जटिल और महंगी प्रक्रिया है। इसे अत्यधिक स्वच्छ वातावरण में ही बनाया जाता है जहां धूल का एक छोटा सा कण भी उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए माइक्रोचिप उद्योग को दुनिया के सबसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में गिना जाता है। माइक्रोचिप ने न केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छोटा बनाने का काम किया बल्कि पूरी दुनिया की कार्यशैली बदलने का काम किया। आज हम जिस डिजिटल युग में रहते हैं उसकी नींव भी माइक्रोचिप पर ही टिकी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी चिप जो दुनिया के कार्यशैली को बदल सकती है, आने वाले टाइम में इसमें और विकास हो तो क्या हो सकता है। तो विज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं, विज्ञान के गर्भ में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जो समय के साथ ही बाहर आती हैं। इसलिए हमें भविष्य की ओर आगे बढ़ते हुए चलते चले जाना है। तो हमने ढेर सारी जानकारी आपको माइक्रोचिप और अन्य विषयों के बारे में दे दी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत, चर्चा थी सोशल मीडिया के उपयोग में बरते सावधानी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे, भेंट वार्ता थी विक्रम 1, अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र का प्रवेश, भेंट वार्ता का अर्थ है डॉक्टर प्रियंक कुमार, भेंट करता थे बसंत कुमार, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

546 दशमलव 45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार। शाम के 5:02 पर कार्यक्रम युवाणी। चर्चा होगी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे, भारत में रेडियो, इतिहास में आज का दिन और फिल्म गीत सुनेंगे आप। प्रस्तुत करता है गौरव कुमार पांडे।

शाम के 5:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक। चर्चा होगी भारतीय प्रसारण दिवस, साक्षर श्रमिक खुशहाल देश, हस्त कौशल और परंपरागत शिल्प, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। शाम के 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर किसान वाणी। चर्चा होगी पशुओं में टीकाकरण। आज की बात, कृषि उद्यमिता से किसानों को लाभ। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुजय कडेमणि। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6:32 पर हमारी दुनिया। चर्चा होगी बच्चों को संस्कारवान बनाएं। हिंदी वार्ता, भेंट वार्ता, राजयोग द्वारा सकारात्मक जीवन शैली, भेंट वार्ता का

7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर आदिवासी अखड़ा, चर्चा होगी झारखंड के मौसम में अनुकूल है ब्लैक बंगाल बकरी, बटेर बत्तख मुर्गी मछली पालन लाभकारी व्यवसाय। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे और ओली मिंच। 7:45 पर सुर भारती, संस्कृत वार्ता योग ध्यान जप। वार्ताकार होंगे चंद्र माधव सिंह। 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा जो कि दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8:15 पर रजनी गंधा, 8:30 पर सुर्खियों में, 8:45 पर समाचार संध्या न्यूज एट 9, 9 बजे, 9:15 पर उर्दू में समाचार।

रात्रि के 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स, 10 बजे का समय होगा संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी रांची है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आपकी शाम को हम सुनमई बनाने जा रहे हैं इन प्यारे प्यारे गीतों से। आइए सुनते हैं पहला गीत फिल्म मैंने प्यार किया से, जिसे गाया है SP बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने। शब्द रचना है देव कोहली की, संगीत है राम लक्ष्मण का।

0: मान।
1: अगला गीत है फिल्म केदारनाथ से अरिजीत सिंह के स्वर में, बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत है अमित त्रिवेदी का।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साज सरगम। अगली पेशकश है फिल्म बॉर्डर से, जिसे गाया है सोनू निगम व अलका याग्निक ने। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: अपने पापा की टेक्निक भूल जा, इधर वही सीख जो मैं सिखा रहा हूं, समझी?
1: हेलो जी, गीता तो बाहर गई।
2: कितने साल हो गए ना मैंने तुम दोनों से जान मुझ के हारते हुए। इट इज द ट्रूथ।
0: देखा, टेक्निक सही हो तभी पहलवान साइड करता है ना? चलो
3: जल्दी से नेशनल जीत ले, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी भी।
4: हाँ दीदी, आप कब वापस आ रहे हो?
3: अगले हफ्ते आ रही हूँ। के ले आऊँ?
4: नहीं नहीं कुछ नहीं, आप आ जाओ।
3: चल ठीक है।
5: कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म छिछोरे से सुनते हैं ये गीत, जिसे गाया है नक्श अजीज देव ने की, अमित मिश्रा, श्री राम चंद्रा और अंतरा ने, शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की, धुन बनाई है प्रीतम ने।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी रांची के ऑड्रे हाउस में आयोजित दो दिवसीय जलवायु अखाड़ा समिट का आज समापन हो गया। समिट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के समक्ष एक गंभीर चुनौती है, जिसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, आजीविका, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बीच जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सीआईडी की टीम ने जेपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची स्थित आवास पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीआईडी की टीम पुलिस बल के साथ उनके आवास पर पहुंची और जेपीएससी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रही है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आज कोडरमा में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोमचांच और नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित कई विस्फोटक भंडारण स्थलों पर छापेमारी कर रही है। कोलकाता में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान इसके तार कोडरमा से जुड़े मिलने के बाद एनआईए की टीम यहां पहुंची है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज की संध्याकालीन सभा में। आज की इस संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूँ मैं संगीता। आइए श्रोताओं करते हैं आज के संध्याकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी श्रोताओं को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता को हमने आपके लिए सजाया है युगल गीतों से।

संध्या के 5:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर रहेगा डोबरो बिरवली और सुनीता हासदा का। संध्या 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार और संध्या के 6:02 पर आप सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा रुद्रानी घोष और चंपा बक्सी का। छह बजकर 6:30 पर आप सुनेंगे संथाली कार्यक्रम और संध्या 7:00 प्रसारित होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर आप आनंद लेंगे आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। रात्रि के 8:00 आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा और रात्रि के 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित न्यूज़ एट 9 को आप सुनेंगे रात्रि के 9:00 और रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी रांची से। रात्रि में 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और रात्रि के 11:10 पर हमारे आज की सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं युगल गीत। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला युगल गीत गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वरों में फिल्म मन से। बोल लिखे हैं समीर ने और धुन है संजीव दर्शन।

क्या दिल ने कहा। आप सुन रहे थे इसी फिल्म से ये गीत, आवाजें थी गायक कलाकार शान और अलका याग्निक की। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा गायक कलाकार लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वरों में फिल्म लम्हे से।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: आकाशवाणी चाईबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता का। आज के इस कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवा रहे हैं युगल गीत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गायक कलाकार मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में फिल्म लव 86 से। बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

श्रोताओं का एक कलाकार मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में गाए हुए फिल्म लव 86 के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में श्रोताओं हमने आपको सुनवाए युगल गीत, तो अब इस कार्यक्रम से हमें विदा दें। नमस्कार।

FM के 101.7 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में संध्या के 5:30 होने वाले हैं। वक्त हो चला है हमारे आज के अगले कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱭᱚᱢ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱱᱟ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱟᱭᱩᱵ ᱜᱩᱲᱤ ᱢᱚᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱦᱚᱵᱟᱥᱮ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ
1: बिल्कुल। और जैसे कि डोबरो जी ने कहा कि हम हर तरह की खेती करते हैं और जो भी फसल होता है हम उसे अगर समय के अनुसार लगाते हैं तो उसमें हमें मुनाफा भी मिलता है। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं और ये बहुत ही ध्यान देने योग्य की बातें होती है कि सबसे पहले जो होती है किसी भी फसल को हम लगा रहे हैं तो उसकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी किस मिट्टी में हमें कौन सा फसल लगाना है, ये इसकी भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और जहाँ तक मूली की खेती के अगर हम बात करें तो मूली की खेती के लिए जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी बालुई मिट्टी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे कंद होते हैं मूली का जो मतलब मूली होती है वो कंद फल जो होती है वो सीधे ज़मीन के अंदर फलती है, और अगर हमारा मिट्टी दबाव भरा रहे, टाइट रहे जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत कठोर रहे, तो उसमें जो है मूली ठीक से हो नहीं पाती है। तो अगर हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे मैदान या ऐसे खेत की जो है हमें चुनाव करना

0: चाहिए जिसमें बालुई मिट्टी रहे, जो भूर भूरा रहे, और अगर हम जैसे समतल मैदानों में करते हैं तो उनकी भी मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए, ताकि जब हम हल जोत करके उसे 2-3 बार जब हम पटा लेते हैं और उसकी अगर हम बीजों को डालते हैं वहाँ, कई लोग होते हैं कि क्यारी बना करके जो है पौधे लगाते हैं, और कई लोग होते हैं जो बीज से मतलब एक ही बार में बीज लगाते हैं और फिर वहाँ से ही वो अपने फसलों को देखते हैं। तो ऐसे समय में हमें भूरभूरे मिट्टी में ही बीजों को डालना है और हल्का सा उसे जो है हमें दबा के रखना है, ताकि हमारा जब ऊपर से जो पत्ते निकलते हैं और अंदर की गहराइयों में भी हमारा जो है मूली अच्छी तरह से हो पाए।
1: এসো সারে কাজে সুনিতা তিকিং কিন জাগার বো চাষ গিয়া কো ওকন আবনেন মূলা রিয়া উন্নত কিসম রিয়া জো মূলা কো বো চাষে রিয়ো চি জান লেকান আরিও ওকন তার গিতিল নো গে মিনা ইনকা রাউ নো গে মিনা ইনকাম তারে গে মূলা রিয়া চাষ কো বো চাষে রে এসো বড়িং লেকাতে ইনা রিয়া চাষ রিয়া লা পাবো নাম দাইয়ে আন্ড ও জানা বো চাষে তান আয়ের কাজে কেলকা বড়িং লেকাতে বো সিন ওলিয়া ক্যারি কো বাইলিয়া আবু আবু কম্পোস্ট কাত কোবো এমলিয়া গুরি উতারিও এনেতে জোকা বুগে মেমে বিতে সানিং রে বো চাষিয়া এনরে দো এনা ধাকা ওতান রে এসো বাড়িং এ টাইডে এনামিয়া এন তো সবিন জাং অমনিয়ান তিয়া আন্ড ও ধাকা ও তিয়া ইসু বাড়িং এ এনরিয়া চাষ বো বাই দিয়া মিতে রে ঝালকা বো হেরতার তো এন ধাকা কো এপেসিরা ইন্দো ইনা বাড়িয়ে কা ইনারে যে এই পুকুর মুটো নয় না মেহনত নয় তাকে
0: বিলকুল বিলকুল ডোবর
1: ইনা মানতে গিতিল নয় লেখা তো এসো বাড়িয়ে সিধে সিধে অন্ড বুগি গে দাকা অন্ড মার নেলেকা দাকা তিয়া চাষ করে কাবু উসেনে যদি চাষ ইয়া গিয়া কো তার সুনিতা বো গিতিল গুড়া লেখা না কমে না তো মূল্য আলঙ্গা চাষ গিয়া কো চাষ একা অন্ড ইনারিয়া লাপা কো নামে কা নিন চারচা তিসিং নিন তা জঙ্গে লাং তুন্ডুতা অন্ড এসো জরুরি সন্দেশ লং আয়ুমেরি
0: বিলকুল
2: জলবায়ু ক্যা হ্যাঁ হমে ইসকি পরবাহ ক্যো করি চাহিয়ে নমস্কার দোস্তো ক্যা আপ জানতে হ্যাঁ কি জলবায়ু ক্যা হতি জলবায়ু ওহ সামান্য মৌসম হো হম কিসি জগা পর লম্বে সময় তক লগভগ 30 সাল তক মহসুস করতে হ্যাঁ সূর্য কি রোশনি হওয়া জমিন সমন্দর ও বরফ সে প্রভাবিত হতি হৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ক্ষেত্রো জেসে ভূগোল মহাসাগর বিজ্ঞান ও মৌসম বিজ্ঞান সে জুড়ি জানকারিও কো এক সাথ লেকর অধ্যয়ন করতে হ্যাঁ তাকি হম ইয়ে সমঝ সকে কি হমারা গ্রহ কেসে কাম করতা হেকিন আজ হমারি জলবায়ু পহলে সে কহি জ্যাদা তেজি সে বদল রহি হ ইসকা সবসে বড়া কারণ মানব গতিবিধিও সে গ্রীন হাউস গ্যাস কা নিকলনা হ্যা ইস বজা সে গরমি বড় রহি হাড় আ রহি হুখা পড় রা হ্যাঁ সমুদ্র কাজ জলস্তর ভি বড় রা হলবায়ু পরিবর্তন সে লড়নে কে লিয়ে সবসে পহলা কদম ইসে সমঝনা হিসলে ইউনেস্কো জলবায়ু পরিবর্তন কি জানকারী কো আসান ও সরল ভাষা মে সমঝানে কাজ সমর্থন করতা হাকি স্কুল কে বচ্চো সে লেকর সমুদায় কে নেতা তক সবই ইয়ে জান সকে কে ধরতি পর ক্যা হো রা হ্যাঁ হম ইসে বচানে কে লিয়ে ক্যা কর সকতে হ্যাঁ ইস বিষয় পর এক খাস প্রদর্শনী আয়োজিত কি গই হো আপকো দিখায়গি কি জলবায়ু পরিবর্তন হমারি দুনিয়া কো কেসে প্রভাবিত কর রা হ ইসমে সাফ পানি বেহতর স্বাস্থ্য খাদ্য সুরক্ষা ও সংযুক্ত রাষ্ট্রকে 17 সতত বিকাশ লক্ষ্যও কো ভি শামিল কিয়া গিয়া হ্যাঁ প্রদর্শনী আব কই ভাষাও মে উপলব্ধ হিসে পহলে সে হি ভারত ভুটান ও শ্রীলঙ্কা মে সাঝা কিয়া যা রা হিসে লোগো মে জাগরুকতা বড় রহি হে আপনে আপকো বদলতি জলবায়ু কে লিয়ে তৈয়ার কর রহে হ্যাঁ তো জুড়ে রহিয়ে অধিক জানিয়ে ও বদলাব কা হিসা বানিয়ে হম সভি কে লিয়ে জলবায়ু কে বারে মে জাননা বেহদ জরুরি হ্যা
3: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি কে দূরদর্শী নেতৃত্ব মে পিছলে 8 সালো মে কৃষি এবং ইসে জুড়ে ক্ষেত্রো কো আধুনিক বনানে ওর কিসানো কো সশক্ত এবং আত্মনির্ভর বনানে কে লিয়ে কই মহত্বপূর্ণ কদম উঠায়ে গয়ে হ্যাঁ साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
4: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बात है, हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
3: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
5: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
3: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
6: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
3: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
7: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
3: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
8: मैं APO का डायरेक्टर हूँ। मेरा APO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
3: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
9: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
3: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
1: एलान संदेश को चनप सिविल दुरांग बायुमले पुलमती फाट पिंगोंडो चुड़ी को पाए थे।

0: Chase akonado durang bayum tantaikin anentayam ilamar miat bepta japagar bo ayumia bepta japagar ria bise domina anayotia junipululikan jenis ria chase ondo enria bodar ko chilikin ebo o panait bagu jemina bisare rengo shamat ondo sunita hasda tekinya bepta japagar bo ayumia.
1: फिर से मौजूद है नई जानकारियों के साथ और आज जानेंगे कुछ नया कि किस प्रकार हम खेती कर सकते हैं और कैसे अपना मुनाफा कर सकते हैं। आज हमारे साथ है हमारे एक सफल कृषक, आइए जानते हैं उनका परिचय और जानेंगे उनसे कि उन्होंने किस किस चीजों की खेती की है और कैसे की है। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई का परिचय जानते हैं।
2: मेरा नाम है रेंगो समर, गाँव लोकेतु पंचायत इचाकुटी और पोस्ट ऑफिस नाकासा और साथ प्रखंड चैबासा।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में। सबसे पहले आप बताइए कि आपने अभी किस चीज की खेती की है।
2: नेनुआ और भिंडी और झींगा करेली तीन चीज की खेती हुई है वैसे तो, और अभी जो में लगाया तो वो तो खत्म हो गया है, अभी फिर से नया लगा रहे हैं नेनुआ और झींगी और करेली।
1: जी, कहा कि आपने नेनुआ की खेती की है तो रेंगो जी थोड़ा सा बताइए कि नेनुआ की खेत मैंने किस तरह से हम खेत की तैयारी करते हैं और कैसे उसको देखभाल करने का क्या तरीका हो सकता है।
2: सबसे पहले तो जुताई करना पड़ेगा, उर्वरा करके तीन चार बार जुताई करने के बाद जैसे अपना अपना तरीका हिसाब से, जैसे हम तो कर रहे हैं अभी गड्ढा हिसाब से ने 10-10 फुट का गड्ढा बनाते हैं, 10-10 फुट मैंने दूरी में उसे चचार को बीजा लगाते हैं। सबसे पहले तो गोबर खाद कंपोस्ट खाद भी लगाते हैं, उसके बाद हल्का DAP भी लगाते हैं उस यानी के बाद में। जैसे नेनुआ भी वैसे ही करते हैं, झींगा भी और करेली भी, और भिंडी तो लाइन बाई लाइन में लगाते हैं। भिंडी आपका

0: चौड़ाई में 3 से 4 फुट और लंबाई में 2 से 1.5 फुट करके
1: जी
0: लंबाई में लगाते हैं।
1: जी तो रेंगू जी, नेनुआ की खेती में सिंचाई का आपका मतलब क्या भूमिका रहता है, कि कैसे किस प्रकार कितनी बार सिंचाई करना जरूरी है?
0: सिंचाई तो हम 2-3 दिन में एक बार, हम तो कहे जैसे कि मोटर से पटा रहे हैं,
1: जी
0: टुल्लू पंप या बड़ा मशीन से, तो वही हिसाब से जरूरत के हिसाब से ही पानी तो देते हैं, 3 दिन 4 दिन में
1: जी
0: देते रहते हैं।
1: जी
0: गर्मी भी बड़ी है तो अभी गर्मी के हिसाब से भी
1: जी
0: दे रहे हैं।
1: नेनुआ जो अगर हम बीज डालते हैं तो वो कितने दिन के अंदर में पौधा निकल आता है, और उसके बाद का क्या देखभाल होता है?
0: नेनुआ लगाने के बाद तो आपका 4 से 5 दिन तक में, हफ्ता भर अंदर तक में पूरा निकल जाता है,
1: जी
0: और वही कीटनाशक सा, वही कीटनाशक क्या बोलते हैं, उड़ने वाला मक्खी सब चूसता है, तो उसमें हम तो अभी दोनों तरह का दवाई यूज कर रहे हैं,
1: जी
0: रासायनिक भी कर रहे हैं और अपना ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं, अपना तरीका से बना करके।
1: आपने कहा कि अपना तरीका से बना करके, तो मतलब आप जैविक खाद तैयार करते
0: हाँ
1: हैं?
0: जैविक खाद
1: जी तो किस प्रकार आप तैयार करते हैं जैविक?
0: आपका ऑर्गेनिज में अभी जैविक खेती, जैविक का ये तो कीटनाशक तो ये हम लोग का जो जितना प्राकृतिक ये है, गाछ पौधा है जो गाय बकरी सब ने जो जो पत्ता नहीं खाता है वही चीज को गौमूत्र के साथ डाल करके, गोबर मैंने गौमूत्र के साथ सड़ा करके उसको स्प्रे कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं।
1: जी
0: और कीटनाशक तो आपका हम तो दुकाने से लेते हैं,
1: जी
0: अभी दोनों तरह का कर रहे हैं, इसका भी ट्रेनिंग किए हैं तो आपका पारंपरिक खेती का, तो उसका तो उस भी अलग अलग से कर रहे हैं,
1: जी
0: दोनों मैंने मिक्स मिक्स में नहीं, एक ही साथ नहीं, अलग अलग मैदान में कर रहे हैं।
1: जी आपने जिक्र किया पारंपरिक खेती, तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पारंपरिक खेती कैसे मतलब होता है?
0: पारंपरिक खेती में तो जैसे कि पहले से हम लोग खेती करते आ रहे हैं, गोबर खाद हुआ, कंपोस्ट खाद हुआ, और जो कीटनाशक तो वही नीम पत्ता, नीम कल्ली, यही सब से ही कीटनाशक बना करके ही लगाते हैं।
1: जी
0: उसके बाद क्या बोलते हैं, अभी वैज्ञानिक तरीका वाला है वो तो कीटनाशक रासायनिक तरह से
1: जी
0: तो
1: हाँ जी
0: कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। रेंगो जी, नेनुआ की खेती आप कर रहे हैं और इसको आप मार्केट में भी निकाल रहे हैं बाजार में जैसे, तो अभी इसका बाजार भाव कैसे है, नेनुआ का किस प्रकार का बाजार भाव है?
0: बाजार में जैसे हम लोग अभी तो दोनों बाजार है, सुबह वाला बाजार में भी बेचते हैं,
1: जी
0: सुबह बाजार में तो हम बहुत कम बेचते हैं, तो शाम में मधु बाजार में बेचते हैं,
1: जी
0: तो बाजार में देख करके जैसे 30 रुपया 40 रुपया, मैंने नेनुआ थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हम लोग का किसान लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा रेट नीचे ही है,
1: जी
0: और समय समय पर तो थोड़ा 40-50 रुपया भी आ जाता है।
1: नेनुआ में लगभग कितना प्रॉफिट आप लोगों को होता है?
0: अभी तो रासायनिक तरह से कर रहे हैं तो हिसाबे से आ रहा है,
1: जी
0: जैसे कि खाद भी लेना पड़ रहा है, कीटनाशक भी लेना पड़ रहा है और बीजा भी लेना पड़ रहा है, तो सब तरफ से देख करके थोड़ा सा चल रहा है,
1: जी
0: नहीं बोल करके नहीं,
1: हाँ
0: मैंने बच्चा सबको जो पढ़ाने लिखाने में तक तो हो ही रहा है।
1: जी जी और आपने करेली और झींगी की भी आपने बताई खेती
0: जी
1: की है, तो करेले आपने बाजार में निकाला है, तो करेले का किस प्रकार का ये है?
0: करेली का भाव तो 40 से 50 रुपया 60 रुपया, मैंने जो जैसे मैंने गर्मी बढ़ रहा है तो जैसे सब्जी का शॉर्ट हो जाता है तो इसी रेट थोड़ा बढ़ जाता है, और सब्जी थोड़ा ज़्यादा आने लगता है बाजार में तो वो डाउन हो जाता है रेट।
1: तो रेंगू जी, क्या इसका कुछ ऐसा बढ़िया किस्म होती है जिसका लगाने से उत्पादन ज्यादा होता है, तो किस प्रकार की किस्म आप इस्तेमाल कर?
0: देखिए हम तो बाजार से दुकाने से ले रहे हैं बीजा, तो जैसे कि पहले वाला हम लोग का बीजा तो अभी नहीं मिल रहा है, पारंपरिक जो पहले से जो बचा के आते थे वो तो नहीं है, अभी तो दुकाने से फिलहाल तो ले रहे हैं,
1: जी
0: हम तो दुकान जाते हैं लेते हैं पूछते हैं और जो बढ़िया है उसी को ही देता है, मांगते हैं उसी करके ही लगा रहे हैं, और बीजा तो दुकाने से ले रहे हैं।
1: तो ये जो आप खेती कर रहे हैं, क्या इसका आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है?
0: प्रशिक्षण तो हम तो नहीं लिए हैं,
1: जी
0: बचपन से जो देख देख करके ही आ रहे हैं, पहले तो बीजे तो अपने से ही जो बूढ़ा बूढ़ी लोग रखता था वही बीजा लगाते थे, अभी तो 2016 से तो हम जब से शुरू किए हैं थोड़ा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बगान, तो उसमें से तो दुकान कई कंपनी कई निर्भर में है अभी।
1: जी जी
0: पहले तो अपना ही बीजा सब लगाते थे, तो अभी तो कंपनी का निर्भर में है, दुकान से ही ले रहे हैं। 2016 से तो बीजा तो दुकान से ही ले रहे हैं, तो अभी वही चीज चल रहा है।
1: जी बिल्कुल, आपकी बातों से पता चलता है कि आप एकदम पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं और जो हमारे पूर्वज जैसे करते थे वैसे ही आप कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा जब आपको मैंने बाजार में देखा, आप इस तरह का सब्जी निकाल रहे हैं और बहुत अच्छा आप खेती भी कर रहे हैं। तो रेंगू जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को, कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों को हम ये प्रेरणा देना चाहेंगे कि अभी तो उतना जल्दी पारंपरिक खेती में तो नहीं आ सकता है, धीरे धीरे करके वो सब ट्रेनिंग हो रहा है, वो सब जानकारी हो रहा है, वो सब लेना चाहिए। और रासायनिक थ्रू से भी अभी तो डायरेक्ट अभी से इसका थ्रू से तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए, पारंपरिक के लिए। तो अभी बीजा सब लुप्त हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा खोजना इधर उधर से तब जाके हो पाएगा। और ये हम किसान भाइयों को बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा अभी से दुकान का ही निर्भर कर रहे हैं, तो उसी में भी चलाना है और अपने भी होगा तो उसमें भी करना है।
1: बिल्कुल रेंगो जी, हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आपका जो भी आप खेती कर रहे हैं और विस्तार उसका हो और बड़े स्तर पे आपका जो है खेती बढ़े। और जो कुछ भी आपने हमारे किसान भाइयों को बताया उनको बिल्कुल आपके जो भी खेती करने के तरीके हैं वो उनको अपनाएंगे और वो भी अपनी खेती को बिल्कुल सीखेंगे। जी आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, उसके लिए रेंगो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

0: फसल बीमा करा।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
5: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?
4: निन संदेश लोते के तीसिंग चास कड़े रखा मैं कुरित को निन तार के तुंडो उतने ची मुझे डो उतना आयुम संगे कैंसर हम चास गये को तुंडो समय रहे हंडर सिविल लिखते अलिंग डोबर बुड़े लियो
5: सुनीता हाजदा का जोहार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राजधानी रांची के ऑडरे हाउस में आयोजित दो दिवसीय जलवायु अखाड़ा समिट का आज समापन हो गया। समिट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के समक्ष एक गंभीर चुनौती है, जिसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, आजीविका, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनता दल ने आज पेपर लीक मामले को लेकर लोक भवन के समक्ष प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान राजद नेताओं ने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल रही है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्यों में लगे बेहतर कार्य करने वाले 7 बीएलओ और 4 सुपरवाइजरों को एसडीएम अनंत कुमार ने सम्मानित किया। मौके पर श्री कुमार ने कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन से एसआईआर में लगे बीएलओ और कर्मी मोटिवेट होंगे और बेहतर कार्य कर सकेंगे। पलामू पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है और हत्या मामले की विस्तृत जानकारी दी है। और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आज कस्तूरबा आवासीय विद्यालय साहिबगंज जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं के बीच नशा मुक्ति विषय पर निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, बांग्ला कार्यक्रम सात रंग।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम संथाली अखाड़ा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की।

0: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बोयामसिक को अब जिले रे उनका आयमा उनकान गिद्रे को मिना कुआ जाहिरिन आयो बाबा बनु कुआ और बखान आयो बाबा मिना कुआ मेनखान किसी कारण ते उनकुर बेसलिकाते बाको नियल दड़ेको कना उनकान गिद्रे को गोद हताव लगी सरकार पाटा सेट कोन मिशन बात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलावकना नुआते उनको गिद्रे कुआ देख रेख लालन पोलन योजना हाँ को मितागा उनको गिद्रे किछि समय लगी परिवार रे बेस लिखा तो को नील दाड़ेगो मा जीमोन आकुआ 18 बरस उमर हुई धाबी नुआ गोद हताव रेया प्रक्रिया दो बांकना अस्थायी रूप ते नुआ रेया व्यवस्था मिना जहाँ रे गिद्रे दुलड़ते सुरक्षा तहें दाड़ेया जुदी हाबिन हो नुकु गिद्रे आसुल लगी इच्छुक मिना बिना एनखान आई बाबा हा बना होड़ा उमर जोड़ाव कते 115 बरस खन जास्ती आलु हुई दरकार आर जहाँ एकला गे मिनाया उनी हो उनिया उमर 35 साल खन जास्ती आलु हुई उमा मिनखान एकला जहाँ मिनाया उनी दो कुड़ी गिद्रे आसुल लगी दो बांको एम दाड़ेया जुदी अबिन नुआरे इंटरेस्ट मिना बिना इच्छुक मिना बिना एनखान पश्चिमी सिंहभूम जिले रिन होड़ कना बिन अबिन ठेन मुखिया ठेन कोन प्रमाण अकान आय प्रमाण पत्र तहन दरकार आर पुलिस स्टेशन कोन न्याम अकान पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हुई दरकार आर आय बाबा जहाँ नुआरे इंटरेस्ट हतावया उनिया मानसिक स्थिति स्वस्थ तहन दरकार नुआ रेया जास्ती जानकारी हतावा लगी ते अब जिला बाल संरक्षण इकाई रे फोन बन संपर्क दड़ेया फोन नंबर हुयु कना 9955131364 आर मीटिंग नंबर दो हुयु कना 9090700489 मा तुबे नुआ जानकारी साउते गे तेहिंया नुआ आखड़ा दो नोड़े गे केचेदो कना अलिंग बढ़ा हंसदा अपेटेन कोन बिदेलिंग हतावया जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संथाली अखड़ा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में संध्या के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घोषणा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जेपीएससी मामले पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय का किया घेरा। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। 5 अगस्त को प्रकाशित होगा मतदाता सूची का प्रारूप। सीईओ की मतदाताओं से जल्द एनुमरेशन प्रपत्र भरने की अपील। रांची में 2 दिवसीय जलवायु अखाड़ा का समापन। राज्यपाल ने हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। और मुख्यमंत्री से अधिकारियों ने की मुलाकात। डोरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पार्टी के रांची स्थित कार्यालय के घेराव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए आपत्तिजनक व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। श्री साहू ने आज रांची में प्रेस वार्ता में कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से कार्यालय का घेराव किए जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ भाजपा कार्यालय का घेराव किया वह घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
1: भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करने के लिए आए थे। लोकतांत्रिक तरीके से घेराव करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पत्थरबाजी करने का काम किया गया, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए और पुलिस जो वहां पर तैनात थी एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा रहे थे।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज हजारीबाग में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने जेपीएससी पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार में जितनी बार जेपीएससी की बहाली हुई वह विवादों में रहा है। उन्होंने कहा कि इन गड़बड़ियों के कारण राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।
2: जेपीएससी में जितनी भी हेमंत सोरेन के राज्य में 6 वर्षों में हुआ चुनाव, हर परीक्षा विवादों में घिरा रहा और उसका मुख्य कारण है कि जितनी भी जेपीएससी में चाहे पदाधिकारी हो या मेंबर को नियुक्त किया, अधिकांश वो करप्ट लोगों को नियुक्त। झारखंड की बच्चों की भविष्य को बर्बाद ही नहीं ये लोग करेंगे।
0: इधर रांची महानगर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने आज पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय का घेराव किया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कर रहे थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलोकतांत्रिक व्यवहार किया। इसे लेकर पार्टी नेताओं ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
3: जो लोग एक लोकतांत्रिक संघर्ष को खूनी संघर्ष बदलना चाहते हैं और इस तरह से एक अलग माहौल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुद्दा कहीं ना कहीं गौण हो जाए, उन्होंने ईंट पत्थर चलाकर खून हमारा बहाकर हमारे संकल्प और मजबूत के छात्रों की लड़ाई में भी साथ है। कौन लोग पत्थर चला रहे थे, वीडियो फुटेज हमारे पास है और हम उन पर एफआईआर यहाँ कर रहे हैं।
0: राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अनुरोध किया है कि अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को अवश्य उपलब्ध कराएं। श्री कुमार ने बताया कि किसी मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है तो वे अपने बीएलओ से संपर्क कर दूसरा एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या ईसीआई नेट पर ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: राजधानी रांची के ऑड्रे हाउस में आयोजित दो दिवसीय जलवायु अखाड़ा का आज समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राज्यपाल ने नागरिकों विशेषकर युवाओं से जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
1: आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों, वनों, खनिज संपदा तथा समृद्ध जनजातीय संस्कृति से संपन्न राज्य है। इसलिए विकास की हमारी यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो।
0: केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार की योजनाओं से झारखंड के पर्यटन विकास को मजबूती मिली है। उन्होंने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2018-19 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, नेतरहाट, रामरेखा धाम और बाबा बैद्यनाथ धाम की विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आज कोडरमा में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोमचांच और नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित कई विस्फोटक भंडारण स्थलों पर छापेमारी कर रही है। कोलकाता में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान इसके तार कोडरमा से जुड़े मिलने के बाद एनआईए की टीम यहां पहुंची है। जानकारी के मुताबिक अब तक हुई जांच में मैगजीन संचालक लोकाई निवासी शंकर यादव और नवाडीह निवासी महेश कुमार मेहता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक पिस्तौल, तीन कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खूंटी पुलिस ने तोरपा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक जेवर दुकान और शराब दुकान में हुई चोरी मामले में जमशेदपुर और आदित्यपुर से अंतर्राज्यीय गिरोह के चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी किया गया चारपहिया एक वाहन बरामद किया गया है।
2: जो लोग प्राइमरी इन्वॉल्व थे उन सभी की हम लोगों ने अरेस्टिंग की और उन्हीं की निशानदेही के आधार पर हम लोगों ने कवरी भी थी है, जो भी ज्वेलरी चुराई थी इनके द्वारा वो हम लोग को बरामद हुई है और जो लिखर भी इन लोगों से चुराया था वो भी हम लोग को काफी अच्छे खासे सामने में बरामद हुआ और ये लोग जो पकड़ाए हैं इनका काफी बड़ा अपराधिक इतिहास रहा है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 23 आईबीजी मेजर जनरल सज्जन सिंह मान, डोरंड कप के नोडल अधिकारी कर्नल हेमचंद्र और सहायक नोडल अधिकारी मेजर आनंद प्रकाश ने मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने श्री सोरेन को रांची में 26 जुलाई से आयोजित होने वाले डोरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने युवाओं के हित और भविष्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जेपीएससी मामले पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय का किया घेराव। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। 5 अगस्त को प्रकाशित होगा मतदाता सूची का प्रारूप। सीईओ की मतदाताओं से जल्द इन्यूमरेशन प्रपत्र भरने की अपील। रांची में दो दिवसीय जलवायु अखाड़ा का समापन। राज्यपाल ने हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। और मुख्यमंत्री से अधिकारियों ने की मुलाकात। डोरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य साहिबगंज जिले में भी चल रहा है, जिसके तहत विभिन्न चरणों में कार्य किया जा रहा है। 29 जुलाई तक इनोमरेशन फेज होगा तथा इसके अगले 2 माह तक दावा एवं आपत्ति का फेज होगा। 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों राजमहल, बोरियो और बरहेट में क्रमशः 36,900, 50,400 और 27,000 अनमैप्ड वोटर हैं। इन क्षेत्रों में 89.8%, 82.5% और 87.8% वोटर्स का मैपिंग किया जा चुका है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपक दुबे ने बताया,
2: अगर अनमैप्ड इलेक्टर्स की बात करें तो वो संख्या एक राजमहल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 36,900 की है, बोरियो विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50,400 की है और बरहेट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 27,000। तो तीनों एसीज को मिला लें तो लगभग 1,14,000 की है। मैपिंग का प्रतिशत जो है क्रमशः राजमहल, बोरियो एवं बरहेट विधानसभा क्षेत्र में 89.8%, 82.5% एवं 87.8%।
1: केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश के अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और नर्सरी विकास योजना के तहत साहिबगंज जिले के किसान भी लाभ लेकर सफल हो रहे हैं। इसके तहत नर्सरी अधिष्ठापन के लिए 50% का अनुदान दिया जाता है। किसान इससे तैयार पौधों को लगाकर इसके फल से अचार, सॉस, पन्ना, शरबत का उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जिला उद्यान पदाधिकारी अमितेश रंजन ने बताया,
3: हमारे उद्यान विभाग के तरफ से बहुत से किसान जुड़े हैं और राज्य सरकार की योजना उद्यान विकास की योजना के अंतर्गत बहुत सारे किसानों ने इसका लाभ लिया है। जैसे जिसमें कि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, गौतम राय जो कि हमारे राजमहल प्रखंड के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं। पहले वो परंपरागत खेती के थ्रू ही अपना मतलब करते थे, जिनमें उनका ज्यादा बचत नहीं हो पाता था। उसके बाद उनको पता चला, ये योजना लिया और आज वह पूरे जिले में ही नहीं पूरे राज्य में, राज्य के लिए, कृषकों के लिए आज वह गुणवत्ता युक्त फलदार पौधों का उत्पादन कर रहे हैं।
1: गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार साहिबगंज जिले में युद्ध और आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किए गए तैयारियों का निरीक्षण भी किया गया। इसमें एनसीसी, जिला पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। इस प्रकार के मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आम जनमानस को जागरूक करना है। साहिबगंज के अपर समाहर्ता विजय कुमार ने बताया,
4: आज मॉक ड्रिल किया गया। एक तो बम पाए जाने की सूचना को लेकर के किस तरह से प्रशासन किस तरह से एक्टिविटी करी, दूसरा कितनी स्तरीय और तीन तो नहीं दिखे आपने और जो पटा हुआ उसको लेकर के किस तरह से प्रशासन करेगा। इमीडिएट कॉल गया कंट्रोल रूम को, कंट्रोल रूम के द्वारा हॉस्पिटल को फोन किया, पुलिस को फोन किया और जो रस्ता में फोन किया और आकर के किस तरह से जो एक्टिविटी किया गया।
1: विगत कुछ दिनों में हुई बारिश से जहां एक ओर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धान की खेती में लगे किसानों में से ज्यादातर किसानों ने धान की रोपाई भी कर लिया है। केवीके और कृषि विभाग किसानों को आवश्यक परामर्श भी उपलब्ध करा रहा है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
0: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित जिले में आजकल। FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:16 हो चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपके फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो लीजिए, प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। आइए श्रोताओं करते हैं आज के कार्यक्रम आपकी पसंद की शुरुआत आपके द्वारा लिखे गए इन फरमाइशी खतों के साथ। तो कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत हमें लिखा है बेरड़ी से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। आदर्श नगर मलोट के राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडे शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। नांगलोई दिल्ली से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्डा। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है जामठी वरुण अमरावती महाराष्ट्र के मुकेश दिनकल कासलेकर और विमल विशाखा कासलेकर ने। अगली फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता है मोपका भाटापाड़ा से भिवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित और सुमित्रा साहू। ग्राम पैजनिया तहसील कोंच जिला जलौन उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक और आराध्या चंसौलिया ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। दादरी गेट भिवानी के कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने भी हमें खत लिखा है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत, जैसे आवाज़ें दी है गायक कलाकार कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे हैं हर्षद जयपुरी ने और धुन है अनु मलिक की। और इसी गीत को सुनने के एक ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता है लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और थनच आरू साहू। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इसी गीत को सुनना चाहा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज शाह ने। रामभाटा संजय मैदान रोड रायगढ़ के रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी, रानी दीपा लक्ष्मी, सुनीता लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश के योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। चायवासा के सोनू शर्मा, ऋषिकेश और नंदू शर्मा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं माहुलडिया सोनवा झारखंड के नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अनु, तनु, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो। बड़ा बाम्बो जोरडीहा के मोइना महतो, डिम्पी महतो और राहुल महतो की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। पंसाई चायबासा से अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजने वाले श्रोता हैं परमेश्वर कुमार, दयावंती देवी, नीलम कुमारी, रचना कुमारी, पंखुड़ी कुमारी, मीना कुमारी, शिवा खंडायत, शिवम खंडायत, सोनाली खंडायत और अमृता खंडायत कुमारी। किशनगंज बिहार से हमें इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु। अस्तुपुरा

जिला मऊ, यूपी के मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक्स और साजिद की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। इसी गीत को सुनना चाहा बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश के आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। तो आइए श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत। आनंद लीजिए आपकी पसंद के इस गीत का।

इस गीत के बाद श्रोताओं आइए कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वरों में फिल्म मैंने प्यार किया से। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं आमा खोड़ा रेंगाखार से, राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम और चंद्रदीप दक्षप्रिया नेताम, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनवीत मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जीएस रामगढ़िया की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक अंदरा ठाड़ी मधुबनी बिहार के सोभिकांत झा सज्जन, हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लक्की सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और मास्टर एस के सज्जन ने। कुचाई बिद्री के पी सोए, सरिता, दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना सोए और सनी सोए की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। ग्राम सूराबेड़ा के बासिंग सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश, अंशु और बिरू सरदार ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी के बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जयमनी और जयंती ने। पुणे के पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे ने भी अपनी फरमाई समय फिल्म मैंने प्यार किया के इसी गीत के लिए भेजी है। पटेल नगर मलोट पंजाब से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया, न्यू कॉलोनी टुंगरी तसर फॉर्म रोड चायबासा के रश्मिता राउत, मधुस्मिता राउत, प्रकाश जायसवाल, रीना जायसवाल और वैष्णवी कुमारी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। ग्राम बठेना पाटन से इसी गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली और शिवम। चटौदा सारा गांव से सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी है। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चीर डोंगरी पिपड़िया से दुर्गा राम साहू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है बनारस यूपी पीएमसीटी के सद्भावना रेडियो श्रोता संघ से और हमें खत लिखा है आजन सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित सिंह, हर्षित और पुलकित ने। बड़काकाना के अफजाल ताज, साहिल सुल्ताना और मुंबई से महेंद्र बोधी और राजा बाबू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। भिलाई छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। ग्राम बादुड़ी के नारायणपुर

दादा, हेमा को दादा, कैलाश को दादा, सुषमा, पप्पू, प्रीति और विक्की को दादा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। पुरानी टोली जसपुर छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है मालती नागदेव, कुमारी सोनाली नागदेव, मयंक नागदेव, अनिमेश नागदेव और अंसल नागदेव ने। तो हमारी इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यह आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

बेताब कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत इसी फिल्म से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन है राहुल देव वर्मन की। और इस गीत को सुनने के एक ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र के नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। बेरड़ी के हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार और तनु कर्मकार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुटनी बुलंदशहर से हमें खत लिखा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, सहनबाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी ने। पेपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर और योगिता दिवाकर। सेक्टर 67 चंडीगढ़ मोहाली से हमें खत लिखा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा ने। कालका से सुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। फिल्म बेताब के इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं ग्राम फ्रांसीसी, राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और हाँसी शहर के राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है मॉडल टाउन पानीपत से और खत लिखने वाले श्रोता हैं संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा, आनिया, अनाया, नेहा सागर गुम्बर, हिमांशु गुगलानी, इम्बू कुरैसी और सुधीर नूतन। कोटडा बहादुर जिला मंदसौर से हमें खत लिखा है नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पू लाल और वीके डांगी ने। बड़ी बाजार चायबासा के मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मे, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबिया ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। टोंगरी चायबासा से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है पंडित आर के पाठक, अनीता मिश्रा, रिया और प्रिया पाठक। मझगांव के अहमद हुसैन, शाह हुसैन, मजर हुसैन, रहमत अली, अब्दुल्ला, आजम भाई, विरंची गोप और सबा अहमद की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजने वाले श्रोता हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। ग्राम उघड़िया बड़ा बाम्बो से अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजने वाले श्रोता हैं नायडू महतो, उषा महतो, प्रियो महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, राहुल बोद्रा, अर्जुन बोद्रा और रवि बोद्रा। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यह आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म बेताब से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

0: फिल्म बेताब के इस फरमाइशी गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मेरे बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना जंगल गया है तो आउ कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे भक्तों तो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जाए
6: मुकुम बुरन सिंह तमसाय अनिता तमसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
7: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में बुरुड़ी ने बागिया तो कि दुना से यार सी कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमा बुरुड़ी में गया तब जाए तेरे काका भी वो उन्हें बुको को काको मेरे मिया
8: अलिंग मुनि सुरन पे ते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते सेसन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिले आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए 8700001424।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700

0: 001-4242।
1: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और सीमा ने। ग्राम गेलिया लोहार के कोमल बेसरा, बसंती, रमेश बेसरा, अन्नू, पूजा बनमाली और सिद्ध कुमारी ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कुचाई ग्राम ईचा हाथू के गोलाराम लोबादा, लूदरी, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनी और बिंजना और लोबादा परिवार के सभी लोगों ने हमें अपनी फरमाइश भेजी है। ग्राम लोसोदिकी से कोमल महतो, पेमी, गोविंद जीतू और साइमन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा के दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने भी हमें खत के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजी है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है ग्राम पोंडा काटा से और हमें खत लिखने वाले श्रोता है नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती सोरेन, सुहानी देवी, संजय सोरेन, पातुर बांकीड़ा, डोली बांकीड़ा और रघुनाथ चरहट। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ के साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है ओल्ड लिस्नर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन के मंजीत, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। एसबाग पीली कॉलोनी से हमें खत लिखा है मुकेश रानी, कुसुम पलक और पंखुड़ी गुप्ता ने। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है गायक कलाकार उदित नारायण, गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म मुझसे शादी करोगी से। और इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता है लालपुर मारो से कीर्ति ध्रुव, कुमार ध्रुव, सतीश, विनय ध्रुव, निम्मी, पम्मी ध्रुव और रितेंद्र कुमार ध्रुव। खरशावा पतिसाई के सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। सोनवा गांव पोडाहाट से अपनी फरमाइश हमें भेजी मिथुन नायक, मुकेश नायक, राकेश नायक, मुखरू आचार्य और सुखराम नायक ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने भी हमें खत लिखा है। सनी इनक्लैब मोहाली से हमें खत लिखा है बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा ने। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं राधिका गजबिये, राष्ट्रपाल गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। लुधियाना पंजाब के अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद के वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर और परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बद्रुवली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। दौलतबाग मुरादाबाद से खत लिखा जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी ने। हमारी इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म मुझसे शादी करोगी से। आवाज़ें गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक की। तो ये आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गीत, खास खास और खास आपकी फरमाइश पर। आनंद लीजिए आपकी पसंद के इस गीत का।

0: श्रोताओं, फिल्म मुझसे शादी करोगे के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दे, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी का ये चायपासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा का। तो आइए इस कार्यक्रम के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।
1: कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने

राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देश भर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी यह स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर 100 से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन

लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया, जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपनी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है।

0: अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akashvani.
2: आप सुन रहे थे संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

करते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा की शुरुआत और लेते हैं कार्यक्रम के ये फरमाइशी खत जो कि हमें लिखा है ग्राम हतंग टोडांग टोला महाली साई से। और हमें खत लिखने वाले

रखा है। बीरबल महली, सरस्वती महली, फुलवंती महली, शकुंतला महली, सुमानती महली और यशोदा महली। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली जरूड़ वरुड़ महाराष्ट्र से और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं बाबा साहब वाड़ुदेव, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज। एकता कॉलोनी रोहतक के सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। रेलवे रोड गंजू डबरा से हमें खत लिखा है मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है बड़विल ओडिशा से और हमें खत लिखा है सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत ने। बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश के भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजुबाई तड़वी, परू मुबारक बारिकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारिकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है गायक कलाकार पंकज उदास और साथियों के स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म नाम से। और इसी गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र के असरत तड़वी, आरिस अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार के लोगों की फरमाइश भी हमें फिल्म नाम के इस गीत के लिए प्राप्त हुई। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। पाकुड़ झारखंड से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं उत्तम कुमार, भगत, यशु और तासु। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है सरायकिला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से और हमें खत लिखा है शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरामणि मुंडरी, हेमांती मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, डोबरू मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरू मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू और एफएम शिवा मुंडरी ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब के हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, चेतक बिरक और मीका बिरक की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है शास्त्री नगर बीट शहर से और हमें खत लिखा है किशन सपकाल और आशा सपकाल ने। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और परभणी से सी आर कुलकर्णी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। अलीका डबावली से हमें खत लिखा बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी ने। मलोट पंजाब के सीमा, अनमोल, धर्मपार, वीर सिंह लाठी, लखविंदर सिंह संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और किशन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। छोटा निमड़ी चायबासा के बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमार ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। डबावली हरियाणा से हमें खत लिखा जेके बाकोलिया, श्रीमती सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल और मीनू बाकोलिया ने। भाटापाड़ा के सोहन जोशी, हरविंदर चावला और पुणेन्द्र लहरे की फरमाइश भी हमें फिल्म नाम के इसी गीत के लिए मिली। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म नाम से। आवाज़ें गायक कलाकार पंकज उदास और साथियों की, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। तो श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म नाम से।

ये गीत श्रोताओं आप सुन रहे थे फिल्म नाम से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म मेरा साया से। आवाज़ का कलाकार लता मंगेशकर की, बोल लिखे हैं राजा मेहती ने से और धुन है मदन मोहन की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं गांव के तहत सराय किला से राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, अनामिका गोप, सुनीता गोप, गीता गोप, रीता गोप, सुलेखा गोप, आराध्या गोप, माहिर गोप, खुशी गोप और राहुल गोप। चांडल ग्राम हारूडी से अपनी फरमाइश हमें भेजी तुलसीदास महतो, कल्पना मनोरमा, दीनबंधु महतो और मनमोहनी महतो ने। ग्राम सौगा मंगरलोट छत्तीसगढ़ धमतरी के फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से और हमें खत लिखा है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया सोएब खान, मुस्तफा खान, रऊफ भाई और साहिद भाई ने। गांधीबाग अकोला के रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। बटीना रोड डबावली के राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहिंद्र नारंग की फरमाइश भी हमें फिल्म मेरा साया के इसी गीत के लिए मिली। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है गांव कैरो पंजाब से और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। आरती टाउन गोदनी नागपुर महाराष्ट्र से कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें भेजी है अल्जियार अब्राहम, उज्जैनी अब्राहम, एलन अब्राहम, ग्लोरी अब्राहम, एलेक्स अब्राहम, जोसेफ रूफट, अविनाश क्षेत्रपाल, सिद्धार्थ गोंडा ने, हीरामन सेंडे और उनके साथियों ने। बोर्ड सेरा नैला से हमें खत लिखा प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू ने। मेरी टोला चायबासा के विशाल कच्छप और दुलारी बिरुली ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। चितलवाड़ी अकोला से हमें खत लिखा है अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले और इंगले परिवार के सभी लोगों ने। अनारकली बाजार जगराओं के सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और जयपाल यादव की फरमाइश भी हमें फिल्म मेरा साया के इस गीत के लिए प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म मेरा साया से। आनंदी जी श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: படை கட்டணா சுயம் நிதி கட்டுப்படை
1: பாரதிய சேனா.
2: आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश. आकाशवाणी चाईबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में फिल्म महबूबा से. और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय, रोशनी, पूजा, तुसार, प्रभा देवी तामोरिया, इचलकरण जी महाराष्ट्र से, बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे ने भी अपनी फरमाई समय भेजी है. बड़ा बाम्बू गोपालपुर के संतोषी महतो और जय कुमार महतो ने भी हमें खत लिखा. खरसवा गांव दलाई किला से अपनी फरमाई समय भेजी लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरिजन, गीता सोए, सरिता सोए, सारिका सोए, हारिका सोए, तनुजा सोए, विमी सोए, मनीषा सोए, शीतल सोए और सिनेमाए सोए ने. कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत हमें मिला मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से और हमें खत लिखा अभिजीत कवाणकर राही, श्रीमती सरिता कवाणकर और प्रिंस एकांश कवाणकर ने. कार्यक्रम की अगली फरमाइश आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से और हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता है श्रीमती वैशाली शैलेश गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर और कुमारी ध्वनि गवांडकर. बदलापुर मुंबई के सिद्धांत गवांडकर, प्रणीता गवांडकर और टुकटुक गवांडकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई. मेन रोड सोनवा झारखंड से इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं गुरुशरण नायक, अनुसुईया नायक, पिना प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नीक पाणी प्रधान और नील पाणी प्रधान. तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत फिल्म महबूबा से.

फिल्म महबूबा के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के

0: तीसरा पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
7: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की

0: हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
5: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
3: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं।

0: और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
1: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में, रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast-track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours,

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज रात बुखारेस्ट में रोमानिया के अपने हम मनसब निकोशोर डान के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वें दौरत मुश्तरका गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा से ये कहते हुए बात करने की अपील की है कि हुकूमत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जारी एहतजाज के तलबा नुमाइंदगान को पिछले 24 घंटों में बात करने की 4 मरतबा पेशकश की गई। उन्होंने एहतजाजी नौजवानों को बात करने के लिए दावत दी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर JP नड्डा मुजाकरात के दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये बातचीत मरकजी वजीर JP नड्डा की रिहायशगाह या उनके दफ्तर में खुले जहन के साथ की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप

0: किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि हुकूमत खासतौर पर इम्तिहान के पेपर लीक होने के मामले पर तालिब इल्मों की तशवीश से बखूबी वाकिफ है। मीडिया के साथ बात करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके इस जिम्न में भरपूर कार्रवाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान का मकसद तलबा और उनके कुनबों को इस बात की फिर यकीन दहानी कराना है कि जो लोग इम्तिहान के वकार को मजरू करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुतला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से यह कहते हुए अपील की कि वो शरायत ना रखे क्योंकि इस तरह की शरायत को बहस से बचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा।
2: वो बहाना जुड़ रहा, आज को फिर कांग्रेस दोनों सदनों में, शुरू में वो बोलते हैं कि अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
1: मरकजी वजीर और ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने अपोजिशन की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि उनका तर्ज अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और उन्हें इल्जाम लगाया कि अपोजिशन न तो बहस के लिए तैयार है और न ऐवान की कार्रवाई चलने देना चाहती है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन बहस के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि पहले वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामलात पर बहस करने के लिए तैयार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंच गई हैं। कोटोसिनी पैलेस पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सदारती महल में रोमानिया के सदर निकोशोर्डान ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। वफ्द की सतह की बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है। अब से कुछ देर बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के अपने हममन सब जनाब डॉन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज रात सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे से तजारत और सरमायाकारी, दिफा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, तालीम, साइंस और इख्तरा समेत अहम शोबों में भारत रोमानिया ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और आवाम से आवाम के तबादलों को फरोग देना है। रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिल कदर शराकत दार है और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती माहदे के अख्ताम के साथ आने वाले बरसों में दो तरफा इकतदी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। आकाशवाणी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत काबिले तजदीद तवानाई चोटी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2026 2 नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद किया जाएगा। आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जदीद और काबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर जनाब प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस चार रोजा कॉन्फ्रेंस में सरकारों, पॉलिसी साजों, सनती रहनुमाओं, सरमायाकारों, इख्तराकारों और स्टार्टअप्स और बैन अल-अक़वामी इदारों को माहौल के लिए साजगार तवानाई में मुंतकली को रफ्तार देने और बामी इश्तराक के फरोग में तआवुन के लिए यकजा होने का मौका फराहम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब जोशी ने कहा कि यह समिट मुतालिका फरीकों को दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: रिहान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हरित चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और हरित हाइड्रोजन की काफी बात हो रही है, तो एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि हरित हाइड्रोजन क्या है और इसमें हरित क्या है।
3: देखिए, हरित जो है ना, ये जितने भी आजकल डेवलपमेंट है और जो भी हमारी चिंता है वो पर्यावरण को लेकर, और पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ी चिंता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो अभी जो आप हरित सुन रहे हैं, हरित का कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के होने और ना होने से। जैसे कि किसी एनर्जी को हम या किसी ऊर्जा को हम हरित ऊर्जा कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये है कि जिस ऊर्जा को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा वो हरित ऊर्जा है। इसी तरह से हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाली गैस है इंडस्ट्री में। जो इसको बनाने का तरीका अभी तक चल रहा था उसमें CO2 एमिशन था, जो कि पर्यावरण, जैसे कि मैंने बताया, ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण का जो चैलेंज है। तो हरित हाइड्रोजन का मतलब ये है, हाइड्रोजन ऐसे तरीके से बनाई जाए जिससे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ना हो, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड का ना होना, ऐसी हाइड्रोजन जिसे बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले हैं, वो हरित हाइड्रोजन कहलाएगी।
2: अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने हरित

0: हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की बात कही है। और देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक बड़ा कदम भी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो इन सारी चीजों को अगर एक साथ रख कर देखें तो देश में इसकी जो अब तक की प्रगति हुई है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का चैलेंज है यानी ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बिजली सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली जो बनती थी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत थी, तो हम बिजली सेक्टर को ग्रीन कर रहे हैं, हरित कर रहे हैं, यानी सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे कि आप अगर उनको इलेक्ट्रीफाई कर दो, जो पहले बिजली से नहीं चलते थे, अब अगर बिजली से चलने लगे तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगा। जैसे कि सबसे आम एग्जाम्पल आपके सामने है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अगर हम अपनी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल से ईवी की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ईवी से अगर वो चलेंगी तो एमिशन नहीं होगा या कम होगा। और अगर वो बिजली जिससे ईवी चार्ज हो रही है वो हरित है, ग्रीन है, जो सोलर विंड या हाइड्रो से बनी है, तो आपको डबल एडवांटेज हो गया कि आपने डीजल और पेट्रोल के एमिशन भी हटा दिए और इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रीन हुई। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको आप इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते हो सीधे सीधे, जिनको हम लिटरेचर में हार्ड टू अबेट सेक्टर कहते हैं, जिनको मुश्किल है जिनके एमिशन इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कम करना। उनमें ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, सीमेंट है, स्टील है, फर्टिलाइजर है। तो हाइड्रोजन वहां जो इस्तेमाल होती है वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाती है, क्योंकि उसको बनाने में फॉसिल फ्यूल, जिन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, उनका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम उस हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो उन सेक्टर के कार्बन एमिशन भी कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अब हरित हाइड्रोजन कैसे बनती है? हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करना होगा। आप पानी लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसमें, तो उससे हाइड्रोजन बनती है और निकलती सिर्फ ऑक्सीजन है, तो कोई पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन जो आपने कहा, ये असल में हमारे राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन का एक्सटेंशन है एक तरह से। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी हरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रांसपोर्ट को भी हरित कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंडस्ट्री जहां हाइड्रोजन इस्तेमाल होती थी उसको भी हरित हाइड्रोजन से हम रिप्लेस करना चाहते हैं।
0: रेहान जी, जिस तरह से आपने तमाम चीजों को जोड़ा है, तो थोड़ा सा अगर पीछे अगर के बात करते हैं तो सरकार का सोलर एनर्जी पर भी काफी फोकस रहा है कि सौर ऊर्जा को अधिकतम देश में बढ़ावा दिया जाए और कई सारी योजनाएं भी सरकार ने लागू की हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों ही पैरेलल चलने वाली चीजें हैं कि सौर ऊर्जा में भी देश काफी प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा, और हरित ऊर्जा का एक मिशन तो हम अब लेकर के चल ही रहे हैं?
1: नहीं, ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से पूरक हैं, एक दूसरे को समर्थन करने वाली, एक दूसरे की सहायता करने वाली चीज। कैसे होंगी मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, हमने पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी से हम कहते हैं, जिसमें कि हम सोलर विंड इनको मानते हैं, उसके अंदर बहुत काम किया है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे ऊर्जा सिस्टम में। जो सोलर हमारे पास 10-12 साल पहले 1000 मेगावाट भी नहीं था, आज हम 180 हजार मेगावाट से ऊपर चले गए हैं, और हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड लक्ष्य है, 2030 तक हम कितना करेंगे, 35 तक, 2047 तक और 2070 तक। तो हमारी इसमें बड़ी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, और हमारे देश के जो इसमें लक्ष्य भी थे ना, वो बड़े एम्बिशियस रखे गए कि 175 2022 तक करना था, फिर 500 गीगावाट 2030 तक करना है, फिर 2047 का भी है। 2070 में आप जानते हो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत प्रॉमिस कहे हैं उसमें से एक ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब है कि हम एमिशन कम करेंगे अपने, और अगर कुछ होंगे भी तो उनको एनवायरमेंट में जाने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाएगा, तो ये भी टारगेट है। तो इसमें क्या है कि जो बिजली हम बना रहे हैं सोलर और विंड से, उसको इस्तेमाल करके अगर हम हाइड्रोजन भी बनाएंगे, एक तो हमने बिजली के एमिशंस को खत्म कर लिया, और दूसरे हमने जो हाइड्रोजन की वजह से एमिशंस हो सकते थे उन्हें खत्म किया। इसके अलावा सोलर के साथ क्या है कि वो दिन में है, जितनी देर सूरज की रोशनी होगी उतनी देर आप बिजली पैदा कर सकते हो उससे। तो हम इस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे पास दिन में बहुत सारी ऊर्जा होगी जो हम सोलर यानी सौर ऊर्जा से बिजली में बनाएंगे। तो अगर हम उसको, जो ऊर्जा हम उससे पैदा कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, तो हम जो हमारा सिस्टम बढ़ा रहे हैं, हम और सौर ऊर्जा भी बनाते जाएंगे, उसके साथ लगाते जाएंगे, उसी को इस्तेमाल करके अगर और हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो ये हमें डबल बेनिफिट हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ पर्यावरण की बात हुई,

0: लेकिन हमें एक अपनी ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के मामले में हम मोस्टली डिपेंडेंट थे यानी आयात के ऊपर, अब सौर ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना है आपको,
1: वो हम खुद कर
0: पवन
1: सकते
0: ऊर्जा
1: हैं।
0: को कहीं से आयात नहीं करना, लेकिन उसके जो कंपोनेंट है पैनल जो इस्तेमाल होते हैं वो आपको बनाने, तो वो उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और पैनल में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं उस सेल में और दूसरे कंपोनेंट में। इसी तरह से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी पार्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है जो मैंने बताया
1: जी
0: जो पानी को कन्वर्ट करेगा उसको लेके के यही देश में बने, उसके ऊपर ये मिशन का कंपोनेंट है, उस पर भी मिशन काम कर रहा है। और दोनों ही सेक्टर जो है ये रोजगार देने वाले भी हैं,
1: जी
0: लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इनसे हो रहा है।
1: रेहन जी, अभी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एक ऐसे समय पर हो रहा है जब देश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ही हरित हाइड्रोजन ट्रेन को भी झंडी दिखाई थी। तो इस सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये केवल एक उपलब्धियों का साझा करने का मंच है, या फिर भविष्य की योजनाएं हैं, जो रोड मैप है उनको साझा करने की दिशा ये प्रदान करेगा?
0: ये अवसर दोनों चीजों के लिए होगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन हम लाए हैं, ये ऊर्जा क्षेत्र में एक मिसाली परिवर्तन है। ऐसा एक डेवलपिंग कंट्री जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री भी है,
1: जी
0: जिसको अपनी ऊर्जा जरूरतें ही पूरी करनी थी और साथ में ये पर्यावरण कह लीजिए, ऊर्जा सुरक्षा कह लीजिए, उन दोनों को देखते हुए जितनी तेजी से हमने ये बदलाव किया है, ये बहुत सारे देशों के लिए इससे क्या प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, सीखने का स्रोत हो सकता है, या वो इसको अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है, लेकिन आगे सालों, जैसे मैंने बताया, इसमें हमारे आगे के सारे टारगेट सेट हैं, जिसे कहना चाहिए हमारा जो विजन और पाथ है वो क्लियर है, तो ये उसके लिए भी मौका है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, किन चीजों को हम और मजबूती देंगे। और तीसरी बात यह कि ये कोई भी जो क्षेत्र है, वैसे भी ऊर्जा क्षेत्र, ग्लोबल वार्मिंग, नेट जीरो, ये सब बहुत बड़े काम है, इसमें अंतरदेशीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक दूसरे से सीखना समझना, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है।
1: आप जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो श्रोताओं को हम ये जरूर बता देंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक सदस्य देशों के रूप में काम करता है, और दुनिया के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में भी हमारा नाम शामिल है। तो ऐसे में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका क्या निभाई जा सकती भारत के द्वारा, खासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और सरकार ऐसे नीतिगत फैसले भी ले रही है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े।
0: भारत ऑलरेडी इसमें कई सेक्टर में नेतृत्व की तरफ है, और जो आपने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें नेतृत्व भारत का ही है और ये भारत की ही पहल पर बना और बहुत अच्छी पहल है। उसमें अब तो 120 से ज्यादा देश उसमें जुड़े हुए हैं और जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो हमने किया वो हम साझा करते हैं उनसे। उसके अलावा एक और भारत का इनिशिएटिव है, इसी से रिलेटेड, उसे कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो भी भारतीय पहल है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसमें क्या है कि आइडिया ये है कि सूरज तो कभी नहीं ढलता है, आज यहाँ नहीं है तो दूसरे देश में चमक रहा है, नहीं तो तीसरे देश में चमक रहा है, तो कैसे हम एक दूसरे की मदद से उसका और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अब मैंने बताया, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग में भी, वो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रोलाइजर्स की हो, ग्रीन हाइड्रोजन की, उसमें भी तेजी से बड़ा काम हो रहा है, तो इसमें भी हमारे सामने मौका है कि हम इसमें भी नेतृत्व प्रोवाइड कर सकते हैं।
1: रेहन जी, वापस अगर हरित हाइड्रोजन की हम बात करें, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्टील की बात है, फर्टिलाइजर की बात है, रिफाइनरी है, शिपिंग है, भारी परिवहन जैसा कि ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते, इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उज्ज्वल भविष्य देखा जा रहा है इस ईंधन का, कि ये ईंधन हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लागत कम आएगी, रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और आगे चल करके जैसा आपने बताया था कि डिपेंडेंसी वाली बात जो है वो उसमें काफी कमी आएगी। आज जो आप देख रहे हैं तमाम चीजें, तो आपको क्या लगता है कि हमारा आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है, और साथ ही हम कितना आगे तक जा सकते हैं?
0: देखिए, आवश्यकता की तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरह के हालात बने या बनते रहते हैं जियोपॉलिटिकल, उसमें ऊर्जा सुरक्षा तो सर्वोपरि है और ऊर्जा सुरक्षा पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और हमें जरूर इस पे आगे बढ़ना होगा, करना होगा। और मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 सालों में शुरुआती दौर में हम एक एक्सपेरिमेंट टाइप फेज में थे, जब हम ये देख रहे थे कि सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी और जो है वो कितना हम यूज कर सकते हैं, कैसे प्ले आउट करेगा। लेकिन उसके बाद फिर 2014 और 15 के बाद जो हमारा ना, वो एक तरह का एक्सपेंशन फेज था। आज आप देखें कि सोलर एनर्जी एक आम तौर पर एक्सेप्टेड सिस्टम है, लोग अपने आप ही लगा रहे हैं, सरकार की मदद है, किसानों और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जो घरों में लगा रहे हैं, और आप देखो 50 लाख के करीब तो रूफटॉप सोलराइजेशन हो गए, किसान भी लगा रहा है। तो ये अब हम इस दौर में आ गए हैं कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा हमारे मेन सिस्टम रहेंगे और हमारे सिस्टम

0: के इर्द गिर्द ही डेवलप होंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ ये कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की तरफ एक कदम है, लेकिन पर्यावरण की तरफ भी कदम है, मगर साथ साथ ये हमारी नई ग्रिड जो हम बना रहे हैं, ये जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा होगी मेनली, उसमें भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।
1: सरकार जिस तरह से इन योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में सोलर मॉड्यूल पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर, ये जो उपकरण है, इन्हें घरेलू स्तर पे अगर बढ़ावा मिलेगा तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो स्वयं का कुछ काम करना चाहते हैं?
0: देखिए, जो टेक्नोलॉजी है उसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी यानी आम लोगों में उसकी पूरी तरह पहुंच हो जाए, उसमें उसके पर्यावरण के एंगल के साथ साथ उसके पैसे का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोग ये भी देखते हैं, जैसे हमने सौर ऊर्जा को किया, आज वो सबसे इकोनॉमिक, सबसे कम कॉस्ट वाली ऊर्जा स्रोतों में से है, तो वो पिछले जो 10-12 सालों की जो डेवलपमेंट थे उसी से हुआ। इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है कि अभी कोशिश ये है कि इसकी कॉस्ट ग्रे हाइड्रोजन के बराबर या उससे भी कम लाई जा सके। उसी की तरफ ये घरेलू उत्पादन जो आपने भी बताया, PLI और सब स्कीम्स से हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर को भी बनाया जाए, जिससे कि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो फिर वो उसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक स्टार्टअप स्कीम है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है, MNRE की स्कीम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसमें छोटे स्टार्टअप्स, नए नए आइडियाज को भी समर्थन, ना कि तकनीकी सपोर्ट दिया जाएगा बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर एक बहुत हैपनिंग और एक्टिव सेक्टर है, और इसमें बहुत काम हुआ है और आगे भी बहुत काम होता रहेगा, और हम ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण बचाना और साथ साथ जॉब क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: रिहान जी, बिल्कुल अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। हमेशा मन में होता है कि यदि कोई नई चीज आ रही है तो आम लोगों तक पहुंचे वो, जैसे हरित हाइड्रोजन, आपको लगता है कि बहुत ही जल्द ये सामान्य लोगों तक इसकी पहुंच हो जाएगी?
0: आम आदमी के लिए डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कम है, क्योंकि आप देखिए वो इंडस्ट्री में यूज होगा या बड़े ट्रांसपोर्ट में भी बड़े लेवल पर होगा आम आदमी के लिए, लेकिन कुछ जो कार है जैसे गाड़ी, उसके अंदर हाइड्रोजन के इस्तेमाल में भी काफी अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर सेक्टर में देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन वाइडर एक्सेप्टेंस की तरफ है और अच्छा इसका भविष्य है।
1: रेहान जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: कंट्री वाइड।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है गजलों के कार्यक्रम महफिल का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये पहली गजल फनकार मिताली सिंह के स्वर में।

श्रोताओं, भूपेंद्र सिंह के स्वर में गाई हुई इस गजल के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल।

एफ एम के 101.7 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। पेश है हमारा आज का अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग में आप सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए करते हैं आज के कार्यक्रम सुरों के रंग की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म मेरे हमसफर से।

गायक कलाकार मुकेश केसवर में आपने ये गीत सुना फिल्म रास्ते का पत्थर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार किशोर कुमार केसवर में फिल्म राजपूत से।

गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये गीत आपने सुना फिल्म राजकुमार से। आइए इस गीत के बाद श्रोताओं सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस छोटे से विराम के बाद। इस आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में फिल्म आराधना से। बोल आनंद बक्सी के हैं, धुन है एसटी वर्मन की।

श्रोताओं, गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में गाए हुए फिल्म आराधना के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं समाप्त होता है।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायपासा केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी
1: जी विषय पर अपनी बात।
2: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
2: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से

इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। यूनियन मिनिस्टर डॉ जितेंद्र सिंह हैज अपील्ड टू द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ द एनईईटी पेपर लीक इश्यू टू कम फॉर टॉक्स, सेइंग गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशंस ऑन ऑल इश्यूज। टॉकिंग टू मीडिया द मिनिस्टर सेड that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
0: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जे पी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस विद यू एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग।
1: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट द सेंटर विल सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट एंड इट्स स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन एनईईटी पेपर लीक्स एंड असर्टिंग दैट प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रिमेन्स द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। इन सोशल मीडिया पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री। हिज स्टेटमेंट कम्स अमिड ऑनगोइंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that the government is highly sensitive to the concerns of students, particularly over competitive examination paper leaks. Talking to media, Ms. Sitharaman said that the government had acted swiftly by arresting those involved in the NEET paper leak issue. She added that Prime Minister Narendra Modi's announcement of fast-track courts is intended to reassure students and their families that those responsible for undermining the sanctity of examinations will be punished swiftly. The Delhi police today informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. The police said that those social media handles were involved in spreading rumors and false claims to mislead the students and the youth. They urged the people always verify information before trusting and sharing them. Delhi Metro Rail Corporation, that is DMRC, has informed that 17 metro stations will be closed from 7:30 a.m. tomorrow till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramkrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Jhandewalan, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.